सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। सुबह के 5:55 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह की 6:05 हुए हैं। आइए करते हैं पूर्व वंदन कार्यक्रम वंदना में।

हे विघ्नहर्ता शंकर सुता, हे मंगलकारी गणेश, शरण में लो हरण करो मेरे मन का हर क्लेश। कदम हो हर सदमार्गों पर बांटू खुशियां अशेष, मन में मेरे न कभी भरे किसी से कोई भी द्वेष।

प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम। आपने मिटाया सदा तम तमाम, जो भी लेता श्री राम का नाम वो पाता बाल कृपा आठोयाम। जड़ चेतन अग्नि नव जल वायु, राम बिना है हर चीज निष्प्राण। जिस चीज से निकल जाए राम उसका हो जाता है काम तमाम। त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को अयोध्या में दशरथ गढ़ जन्मे राम। खुशियां छाई खिले मुखड़े तमाम, जले दीप घर घर जैसे प्रकटे राम।

बादल भी तब जमकर बरस जाते हैं जब वसुंधरा उसे दिल से पुकारती है। वो इश्क भी परवान चढ़ जाता है जब वो इश्क उस खुदा की इबादत होती है। जो झुकता है सिर खुदा के दर पर सच्चे मन से, मिलता है सुकून वहीं उस रूह की धड़कन से।

0: श्री गुरु नानक के अनुसार धन को कभी भी अपने हृदय में जगह ना दें। जब धन को हृदय में जगह दी जाती है तो जीवन से सुख शांति सब खत्म हो जाती है। मन में लालच और स्वार्थ जैसी बुराइयां घर कर लेती हैं।
1: जब कियो

कल्पतरु नजरें, ओजस्वी चेहरा, वाहन प्रेमी छाया पुत्र है जिनकी जिंदगी का ध्येय माँ के जीवन पर आधारित हैं। वो ब्रह्मांड के न्यायाधीश सबको देते रहते समय समय अपना शुभाशीष। ऐसे सूर्य पुत्र यमुना जी के भाई, हनुमान जी के परम मित्र शनिदेव को कोटि कोटि नमन।

इसी वचन के साथ वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में कलाकार थे बेला सुलाके, अनूप जलोटा, ताले हुसैन, गोपाल सिंह रागी और शंकर महादेवन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य अपनी सभ्यता के विकास के साथ अपनी मेहनत से जीवन के समस्त क्षेत्रों को समृद्ध और प्रशस्त करता आया है, लेकिन संसार में प्रमुख रूप से दो प्रकार के मनुष्य देखे जाते हैं, एक तो भाग्यवादी और दूसरे कर्मनिष्ठ या मेहनती। सभी सुख समृद्धि चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, लेकिन मेहनत या कर्म के बिना सुख और शांति नहीं मिल सकती। जहां एक ओर भाग्यवादी एकमात्र भाग्य का आश्रय लेकर निष्क्रिय बनकर दुखद जीवन बिताते हैं, वहीं दूसरी ओर मेहनती परिश्रमी मनुष्य भाग्य को छोड़कर सतत और अथक श्रम से मेहनत करता है और हमेशा प्रसन्नचित रहता है। जीवन में मेहनत या परिश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। मेहनत के बिना कोई भी मनुष्य धन, विद्या, कला आदि के क्षेत्र में कुशलता नहीं प्राप्त कर पाता है। सुख, शांति और समृद्धि श्रम पर आधारित होने के कारण उसके लिए कल्पनातीत रहती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को इस संसार में नित्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म या मेहनत से ही जीवन गतिशील रहता है। कर्म के लिए ही श्री कृष्ण का यह भी उपदेश था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कवि नलिन का भी कथन है कि जीवन एक सुमन मानो तो

0: सौरभ उसका श्रम है, देवों की वरदान शक्ति भी इसके आगे कम है। दृढ़ संकल्प की शक्ति के द्वारा निष्ठा या श्रम के बल से ही धरती का कायाकल्प होता है। यह पृथ्वी उन्हीं मेहनतियों के लिए है जो इसका अमृत मंथन करते हैं, जो अपनी मेहनत से रेगिस्तान को जोतकर, पर्वतों को काटकर, जल से सींचकर पृथ्वी के सूखे अंचल को हरा भरा बना देते हैं। इसी संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है कि कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। मानव जीवन में अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, कष्ट निवारण के लिए, समस्या के समाधान के लिए, जीवन संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए अपनी मेहनत जितनी सहायक सिद्ध होती है उतना अन्य कोई नहीं। इसीलिए सर्वांगीण उन्नति के लिए मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक श्रम से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने भाग्य का पल्ला छोड़कर कर्म पथ पर पग बढ़ाया, उन्होंने ही इतिहास का निर्माण भी किया। श्री कृष्ण अगर भाग्याश्रित ही रहते तो ग्वाले का जीवन बिताते, नादिर शाह आजीवन ईरान में भेड़ों के झुंड को ही चराते, स्टालिन पारंपरिक जूते बनाने का ही काम करते, गोरकी कूड़ा कचरा ही बीनते, मुंशी प्रेमचंद साधारण प्राइमरी पाठशाला के सहायक अध्यापक ही रह जाते। लेकिन इन सब ने अपने दृढ़ संकल्प से, अटूट लगन से, अथक परिश्रम मेहनत से आज इतिहास में अपना स्थान अमर बना दिया। मेहनती मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी होता है और अपने ही परिश्रम से लक्ष्मी पाता है। भाग्य देगा यह कायरों का नारा है। मेहनत के बिना शक्तिशाली शेर भी अपना खाद्य नहीं पा सकता, उसे भी प्रयास करना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्थ सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत में सब कुछ संभव है, यहां कुछ भी असंभव नहीं है। बस दृढ़ संकल्प से, अटूट लगन से, मेहनत कर्म करने की देरी है। समय पर किया गया परिश्रम समय पर पोए गए बीज की भांति कई गुना अधिक सुख फल देता है, और समय बीतने पर तो केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। महामना मदन मोहन मालवीय ने अपनी कर्मठता के आधार पर ही घर घर द्वार द्वार जाकर परिश्रम से धन एकत्रित किया और वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज उनकी गाथा गाता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी सतत सचेष्ट, कर्मठ, परिश्रमी, बुद्धिमान मनुष्य की ही सहायता करता है। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र साहाय्यकृत विभु।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर विनय वर्मा से एक जानकारी, विषय है साइटिका की समस्या।
2: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, सियाटिका शरीर की सबसे लंबी और मोटी तंत्रिका है, जो कूल्हे से निकलकर पैर की एड़ी तक जाती है। इसके क्षतग्रस्त, दबावग्रस्त और शोथग्रस्त से सियाटिका की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें रोगी को असहनीय कष्ट होता है। इससे पीड़ित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस रोग की गिरफ्त में आने वाले ज़्यादातर लोग 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच के होते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार स्लिप डिस्क, कूल्हे की हड्डी का स्थान से हटना, डिस्क का नाड़ी पर दबाव पड़ना, कमर में चोट लगना आदि कारणों से सियाटिका होता है। सियाटिका, जिसे आम भाषा में साइटिका भी कहते हैं, यह असहनीय कष्टकारक व्याधि है। इस रोग के रोगी को कूल्हे से लेकर घुटने के पिछले हिस्से तक और कभी कभी एड़ी तक एक सीधी लाइन में दर्द महसूस होता है, जो कभी हल्का तो कभी अत्यंत तीव्र होता है। यह दर्द ऐंठन, अकड़न व जलन युक्त होता है। सुन्नपन व सुई चुभने जैसा एहसास होता है। सुई चुभने जैसा एहसास ज़्यादातर पंजे व अंगूठे में होता है। लेटने पर दर्द में आराम मिलता

0: खड़े रहने व बैठे रहने पर दर्द बढ़ता है। ज्यादातर यह रोग किसी एक पैर में होता है। वैसे तो चिकित्सीय परीक्षण और लक्षणों के आधार पर इसका निदान हो जाता है, लेकिन इसका कारण जानने के लिए सीटी स्कैन व एमआरआई की जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी में कोई विकार हो उसका पता चल जाता है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में सियाटिका के रोगी को दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जब इन औषधियों एवं व्यायाम द्वारा लाभ नहीं मिलता, तब आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा का भी प्रावधान रहता है। इसके दर्द से निजात पाने में बारी बारी से गर्म ठंडा सेक बहुत उपयोगी होता है। रोगी को सख्त बिस्तर, ठंडी व खट्टी चीजों का परहेज रखना चाहिए। नियमित योगासन जैसे शलभासन, मकरासन आदि तथा प्रातःकाल घूमने जाने से बहुत लाभ होता है। चलते व बैठते समय हमेशा पीठ सीधी रखना चाहिए व कैल्शियम की अच्छी मात्रा से युक्त सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए। शरीर में वात प्रकोप बढ़ाने वाले आहार का सर्वथा त्याग करना चाहिए। स्वतः यदि हम होम्योपैथिक उपचार की बात करते हैं तो रोगी के व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर औषधियों का चयन किया जाता है। दर्द की प्रकृति क्या है, दर्द किस तरफ है, दर्द के बढ़ने व घटने में कौन कौन सी बातें प्रभावी होती हैं आदि बिंदुओं पर विचार कर उपयुक्त औषधि का चुनाव किया जाता है। सियाटिका रोग में उपयोगी कुछ मुख्य होम्योपैथिक कोलोसिंथ। इस औषधि के रोगी को ज्यादातर दर्द बाई तरफ होता है, जो कि जांग से नीचे पैर की तरफ फैलता है। मांसपेशियों में खिंचाव तथा चीरने फाड़ने जैसा दर्द होता है। इसका रोगी चिचड़े स्वभाव का होता है। जोर से दबाने तथा गर्म सेक करने से दर्द में आराम होना इस औषधि का मुख्य लक्षण होता है। जोड़ों में अकड़न व खिंचाव होता है। क्रोधित होने पर तकलीफ बढ़ती है तथा आगे की तरफ झुकने से आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों में कोलोसिंथ 30 शक्ति में दिन में 3 बार देने से लाभ होता है। नेफेलियम, यह औषधि जीर्ण सियाटिका यानी कई दिनों से बने हुए सियाटिका में अधिक लाभ करती है। पिंडलियों व पंजों में ऐंठन होना, नाड़ी में तीव्र दर्द होना, कभी सुन्नपन तो कभी दर्द होना, पैरों को ऊपर की ओर खींचने तथा जांघ को पेट की तरफ मोड़ने से आराम मिलना आदि लक्षणों में नेफेलियम 30 शक्ति में दिन में 3 बार देने से लाभ होता है। डायस्कोरिया, यह दाई तरफ के सियाटिका में लाभदायक है। कमर तथा पैरों में तीव्र दर्द होना, आगे झुकने में दर्द बढ़ना, सीधे खड़े होने पर आराम मिलना आदि लक्षणों में इसकी 30 शक्ति में दिन में 3 बार देना चाहिए। तो श्रोताओं, होम्योपैथिक उपचार साइटिका के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है, और यदि इन बातों का ध्यान रखें और यदि इन दवाओं का इस्तेमाल करें तो इस रोग से निजात पाई जा सकती है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में जानकारी बस यहीं तक। नमस्कार।
1: साइटिका की समस्या, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर विनय वर्मा से जानकारी सुन रहे थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:40 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आज आप सुनेंगे ओम प्रकाश के गाए कुछ लोकगीत। आज सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुनना ना भूलिए, बहुत कुछ खास है आज इस कार्यक्रम में आपके लिए। 102.9 मॉर्निंग हिट्स, ये कार्यक्रम होगा आज सवेरे 8:45 पर। उर्दू प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे सुबह 9:30 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी रामपुर की पेशकश। उपशास्त्रीय संगीत होगा आज सवेरे 9:50 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे राग देसी में जुल्फकार हुसैन खां का गायन। धरोहर कार्यक्रम में दिन में 11 बजे आप सुनेंगे एक नाटक सच्चाई का वादा, लेखक होंगे मोहम्मद शर्जील खान और प्रस्तुति विनोद आनंद दयाल की होगी। दिन में 11:30 पर मन भावन कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम गीतमाला, गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:10 पर। दोपहर 1:15 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी सजीव फोन

कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा में शाम 5 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। रोजाना की तरह ये विवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:15 पर। शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। 6:20 पर आप सुनेंगे कृषि जगत। शाम 7 कार्यक्रम होगा छांव बरगद की, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री विनय कुमार मित्तल से अनुभव प्रधान भेंट वार्ता। आपसे बात करेंगे असीम सक्सेना। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कुंदन जी के गाए कुछ भजन। व्हाट्सएप फरमाइशी मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल रात्रि 8। अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, शाम 7 कार्यक्रम होगा छांव बरगद की, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री विनय कुमार मित्तल से अनुभव प्रधान भेंट वार्ता। आपसे बात करेंगे असीम सक्सेना। हेलो फरमाइश कार्यक्रम होगा दोपहर 1:15 पर। सुनहरा दौर कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सवेरे 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे 2010 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत गौरव भारत देश के। ये कार्यक्रम होगा आज सवेरे 9:25 पर। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। आज सुनिए प्रसंग संख्या 341।
1: एपिसोड नंबर 341 341।

रावण का हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण दिखने लगते हैं। ये देख वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहां एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान अंगद नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं। लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी वृद्ध जांबवान के भरपूर पद प्रहार से मूर्छित होकर एक बार फिर धरती पर गिर जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। एक कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: 55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद आप सुन सकेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमन्त्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य 10th सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
3: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
2: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तु विज्ञान विभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वीयोत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में सुनिए ओम प्रकाश के गाए कुछ लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश के गाए कुछ लोकगीत।

0: ओम प्रकाश गए इसी लोकगीत के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
2: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
1: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
2: आपातकाल में साथ निभाए,
1: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
2: 112।
1: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
2: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
1: यदि चाहिए पुलिस सहायता
2: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
1: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
2: मिटाकर हर सस्पेंस को
1: डायल 112।
2: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
1: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
2: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
1: या फिर भेजें ईमेल ऑलवेज यूज 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
2: जब घेरे कोई भी आपदा
1: तुरंत मिले सहायता
2: डायल 112।
1: चिंता से पाएं छुटकारा,
2: पुष्पा झुकेगी नहीं,
3: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
4: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
5: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
5: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
6: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
5: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: से नो टू प्लास्टिक।
5: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
0: हम आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुनना ना भूलिए, बहुत कुछ खास है आज इस कार्यक्रम में आपके लिए।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी

0: करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक करबला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की करबला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। दसवीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
3: मुहर्रम की दसवीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए। ताजिए के साथ अकीदत मंदों ने जुलूस निकाला और करबला पहुंचकर ताजियों को करबला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मथुरा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और करबलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत। कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुबह सवेरे कार्यक्रम में अखिलेश सक्सेना का नमस्कार आप सभी को। श्रोतों, हर दिन सुबह हर किसी की जिंदगी में एक नई उम्मीदें, एक नया जिम्मेदारी का कहना चाहिए कि दबाव लेकर आता है कि किस तरह से आज का दिन बिताना है। हर कोई मैनेज करके चलता है और इस जिंदगी को जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हर कोई कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, कोई लोग कोई अपना बिजनेस करते हैं, किसी ना किसी तरीके से जीवन यापन करते ही हैं। कोशिश जारी रहती है, कुछ सफल होते हैं और कुछ निरंतर कोशिश करने के बाद सफल होते हैं। और कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई भी बिजनेस अगर सच्चे मन, श्रद्धा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया जाए तो वह सफल ज़रूर होता है। हाँ, कोई भी व्यवसाय थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कराता है। छोटा व्यवसाय कब बड़ा बन जाए, आपकी मेहनत के द्वारा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और छोटे व्यवसायों के वैश्विक महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस, यानी MSME डे, जो कि आज के दिन यानी 27 जून को मनाया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSME विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं, जो 90% से अधिक व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और रोजगार, आजीविका और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे जैसे दुनिया आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही है, नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से MSME को सशक्त बनाना, लचीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण, सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में प्रगति को गति देने के लिए आवश्यक है। 2026 का विषय है नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम रोजगार, आय और स्थानीय विकास के प्रमुख स्रोत हैं। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और कमजोर समूहों के लिए इनका आकार और लचीलापन मजबूत, निष्पक्ष और टिकाऊ समुदायों के निर्माण में सहायक होते हैं। हालांकि इनमें से कई व्यवसायों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, खराब बुनियादी ढांचे से जूझना पड़ता है और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई व्यवसाय अनौपचारिक रूप से संचालित होते हैं जिससे वित्त पोषण, कानूनी अधिकारों और सरकारी सहायता तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित नवाचार में हो रही तीव्र प्रगति से लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME को उत्पादकता बढ़ाने, लचीलापन सुधारने और नए बाजारों तक पहुंचाने और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के अभूतपूर्व अवसर वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। ये सुनिश्चित करना कि MSME इन परिवर्तनों से लाभान्वित हो और पीछे न छूट जाएं, इसके लिए लक्षित निवेश, सहायक नीतियों और मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है। और वर्तमान में भारत सरकार इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ये छोटे छोटे लघु उद्योग एक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। MSME नवाचार, रोजगार सृजन और सतत विकास के शक्तिशाली इंजन हैं। प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना, किफायती वित्त और बाजार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाकर सरकारें और साझेदार MSME को समावेशी विकास को गति देने, लचीलापन मजबूत करने और सतत औद्योगिक विकास में योगदान करने में मदद कर रहे हैं। तो श्रोताओं, देर मत कीजिए, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और खासतौर पर युवा वर्ग जो है स्टार्टअप शुरू करने में माहिर है। और आजकल के डिजिटल युग में कोई भी व्यवसाय अब कठिन नहीं रहा। प्रचार प्रसार के भरपूर साधन उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने छोटे से व्यवसाय को व्यापक रूप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत करिए, मेहनत करने से आपको परिणाम ज़रूर प्राप्त होगा और कोशिश करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।

जी हाँ, काम करो भाई, काम करो, सुबह करो या शाम करो, कुछ इसी प्रकार का जज्बा लेकर आप मेहनत करेंगे तो आपके व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज के इस MSME दिवस पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से 4,000 लोगों को मिला है रोजगार, बिना गारंटी और ब्याज मुक्त लोन से खुद का व्यवसाय कर रहे हैं शुरू। जी हाँ, रामपुर में भी 2,196 युवाओं के सपनों को मिली उद्यमी योजना से उड़ान। आज MSME दिवस पर रामपुर से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जिले के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है और इसमें 2,196 युवाओं के सपनों को उड़ान मिली है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के अनुसार इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 3,032 आवेदनों में से 1,892 युवाओं के ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 2,122 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 304 को स्वीकृति मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अब तक जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 4,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। विभाग ने इस वर्ष लगभग 2,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। और सबसे खास बात यह है कि युवा अब नौकरी मांगने के बजाय सर्विस सेक्टर में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रोजगार देने वाले बन रहे हैं। बिल्कुल, और युवा अगर चाहे तो रोजगार पाने की ललक छोड़ अपना व्यवसाय शुरू कर दूसरों को रोजगार भी दे सकता है। और आज का दिन और भी खास इसलिए भी है, आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ दिनों से गर्मी अपने चरम सीमा पर है, हीट वेव हो रही है। खासतौर पर तो इस समय मानसून आ जाना चाहिए था, लेकिन मानसून अभी लेट है और विगत 2-3 दिन से इतना तापमान बढ़ा हुआ है कि बाहर निकलना दूभर हो गया है। कल भी रामपुर जिले का तापमान लगभग 43.7 था और आज भी इतना ही रहने की उम्मीद है। तो अगर आवश्यक कार्य के लिए आप बाहर निकल रहे हैं तो लाइट कलर के कपड़े पहने, हाँ धूप का चश्मा जरूर लगाएं। और आज इस धूप के चश्मे के लिए एक खास दिवस भी है। जी हाँ, आज है राष्ट्रीय धूप का चश्मा दिवस, नेशनल सनग्लासेस डे। धूप की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से आंखों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जाहिर सी बात है, धूप का चश्मा दिवस मनाने के लिए सबसे पहला काम, धूप का चश्मा निकालिए आप और उसको पहनिए। वैसे तो कोई भी साधारण धूप का चश्मा आंखों को सिकुड़ने से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन कुछ खास तरह के चश्मे आंखों को UVA या UVB किरणों सहित और भी दूसरे नुकसानों से बचाने के लिए बेहतर रहते हैं। धूप के चश्मे प्रकाश के परावर्तन को भी कम कर सकते हैं, जो दृष्टि में बाधा डाल सकता है, और कुछ लेंस प्रकाश को बिखेर कर आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आप आज राष्ट्रीय धूप का चश्मा दिवस मनाने के लिए नए धूप के चश्मे खरीद कर मना सकते हैं। और जिन लोगों के चश्मे के लिए नंबर चाहिए, वो ऑप्टिशियन के पास जाकर अपने चश्मे का माप करवा सकते हैं ताकि उन्हें सबसे अच्छा चश्मा मिल सके। तो धूप का चश्मा लेकर आइए और गर्मी से बचिए, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बचिए। एक और दिवस है आज, जी हाँ, आज है राष्ट्रीय अनानास दिवस और दिल्ली में भारत का पहला वैश्विक अनानास महोत्सव आज आयोजित किया जाएगा। पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, जिसमें त्रिपुरा के प्रसिद्ध रानी अनानास, प्रमाणिक पूर्वोत्तर आदिवासी व्यंजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, कारीगरों के बाजार, हस्तशिल्प उत्पाद, कारीगरों के प्रदर्शन के साथ साथ लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और बहुत सी रोचक गतिविधियां आज के इस समारोह में शामिल रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस के अवसर पर आज जो है 3 दिवसीय आयोजन शुरू होगा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में, जो कि सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगा। इस अनानास महोत्सव के मुख्य आकर्षण रहेंगे GI टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल पर केंद्रित ताजे अनानास, जैम, जेली, चॉकलेट, जूस, डिब्बाबंद उत्पाद और स्थानीय उद्यमियों और खाद्य प्रसंस्करणताओं द्वारा निर्मित अनानास से बने अभिनव उत्पादों के दर्जनों स्टॉल लगेंगे इसमें। GI टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल अपनी मिठास, सुगंध और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये महोत्सव खाने के शौकीनों, परिवारों, छात्रों,
रचनाकारों और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को जानने के इच्छुक लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय किसानों का समर्थन करने के लिए इस आयोजन में खरीदार विक्रेता बैठकें और व्यापारिक मंच भी आयोजित करते हैं। इस महोत्सव में श्रोताओं प्रवेश निःशुल्क है, इसलिए ये एक आदर्श वीकेंड है और इसका आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सबसे आकर्षक अवकाश योजनाओं में से इसको आप बना सकते हैं और त्रिपुरा राज्य के राज्यफल का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, त्रिपुरा राज्य का राज्यफल है अनानास। तो फल और व्यायाम और बहुत सी चीज़ें जब भी कारगर होंगे, जब आप इसका उपयोग करेंगे, योगाभ्यास करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, फलों का सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज रात को बिस्तर पर लेटने के बाद बस एक आखिरी रील कहते कहते रात के 2 बजा देते हैं तो सावधान हो जाइए। अंधेरे कमरे में मोबाइल के स्क्रीन चमकाना सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि आपको जवानी में ही बुढ़ापे में होने वाले दर्द दे रहा है। लेटे लेटे मोबाइल देखने से कम उम्र के युवाओं में गर्दन का दर्द, जाम, कंधे और सुबह उठते ही सिरदर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ इस बीमारी को टेक नेक सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं, जो डिजिटल युग की बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरी है।

0: प्रोग्राम होता है, लेकिन गर्दन झुकने पर यह दबाव कई गुना बढ़ जाता है। यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो टेक नेक सिंड्रोम विकसित हो जाता है। और सबसे ज्यादा रील देखने की आदत जो है वो परेशानी का सबब बन रही है। प्राइवेट जॉब करने वाले 34 वर्षीय युवक लगभग रात में सोने से पहले 3 घंटे तक मोबाइल पर रील्स देखते ही देखते हैं, और जब कुछ महीने बाद उन्हें सुबह उठने पर परेशानी होती है, गर्दन में अकड़न और दर्द होता है, तो देर हो चुकी होती है। टेकनेक सिंड्रोम आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप को लंबे समय तक झुककर देखने से गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। समय पर ध्यान न देने पर गर्दन की गतिशीलता भी कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए स्वास्थ्य का, और मोबाइल पर समय कम दीजिए, बस काम की बात कीजिए। समय समय पर टहलते रहिए, गैप जरूर दीजिए।
1: मुझे देख के जाने मन क्यों ऐसे हैरान है, हैं? हम बोले क्यों, गा के सुनाएंगे।

और अब एक नज़र आज के इतिहास पर। 27 जून 2002 को G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए थे। 2003 में आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द हो गया था। 2005 में ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। 2006 में ग्वेन मिन ट्रेट वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय खिलाड़ी पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 का हुआ था। हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव वर्मन का जन्म 27 जून 1939 को हुआ था। इनके द्वारा संगीतबद्ध गीत हम आपको सुनवाएंगे सुनहरा दौर कार्यक्रम में। साथ ही साथ आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में भी तमिल भाषा के साहित्यकार अकिलन का जन्म 27 जून 1922 को हुआ था। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह का निधन 1839 में हुआ। भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी, सैम मानेकशॉ का निधन 27 जून 2008 को हुआ था। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों पर। हज के लिए 22 तक करें ऑनलाइन आवेदन। जी हां, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामपुर ने बताया है कि हज समिति ऑफ इंडिया द्वारा हज 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इच्छुक हज यात्री हज समिति के आधिकारिक वेबसाइट अथवा मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा के नाम माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 22 जुलाई निर्धारित की गई है। प्रतिबंध

पीड़ित मांझे से शिक्षक की गर्दन कटी, अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, रामपुर में आए दिन हो रहे हैं हादसे। पुलिस प्रशासन की सख्ती भी बेअसर साबित हो रही है। धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी, अगले 3 दिन में वर्षा होने के आसार हैं। जी हाँ, शुक्रवार यानी कल अधिकतम तापमान 41 जबकि न्यूनतम 26 बना रहा, जिसके कारण उमस बनी रही और अनुमान है कि अगले 3 दिन में वर्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 9 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र पुत्रियों का विवाह कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि शासन ने लाभार्थी जोड़ों के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और फेशियल ऑथेंटिकेशन चेहरे की पहचान की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। ऐसे में सभी वर वधु के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट और फेस डेटा अपडेट है। यदि आधार में ये जानकारी अद्यतन नहीं है तो निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर समय रहते इसे अपडेट करा लें। स्कूलों में होगा आपदा प्रबंधन, बच्चों को मिलेगा सुरक्षित शैक्षिक माहौल। जी हां, परिषदीय विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अब सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसमें विद्यालय के भवनों की मजबूती, भूकंप और बाढ़ के खतरे, अग्नि सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। रसोइयों को मिलेगा कैशलेस चिकित्सा का लाभ, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए कार्यरत रसोइयों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जिले में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकरण की जाँच ABSA के द्वारा की जाएगी, इसके बाद उनको BSA के समक्ष पहुँचाया जाएगा। 11 केंद्रों पर 5 पालियों में 14,825 अभ्यर्थी देंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2, 3 और 4 जुलाई को जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET होगी, जिसमें 14,825 अभ्यर्थी देंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक नितिन मुकेश माथुर का जन्मदिन है। वो अपने समय के ख्याति प्राप्त सिने पार्श्व गायक मुकेश के पुत्र हैं। नितिन मुकेश ने अपनी गायकी के तहत कई यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए हैं। इनका जन्म 27 जून 1950 को हुआ था, जो कि दिल्ली के माथुर कायस्थ परिवार से ये बिलोंग करते हैं, जबकि माता सरला त्रिवेदी थी और इनके पिता, जैसे हमने पहले बताया, कि मशहूर गायक मुकेश रहे हैं। 1980 से 1990 के दशकों में इन्होंने कई संगीतकारों के साथ काम किया है। उनके बेटे नील नितिन मुकेश भी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश की आवाज़ में फिल्म दरिया दिल का ये गीत।

आपको कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें पत्र भेज सकते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901 के पते पर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है patrmila@rampur.gmail.com। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज

0: रात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
5: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
6: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
8: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीरअर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
11: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
10: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
1: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone, completing more than 3,500 rides daily. The service will initially be launched across 14 major cities in Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with a target to cover the entire state within a month. Aparna Khun, Akashwani News, Gandhinagar.
10: Secretary Department of Atomic Energy Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle utilizing nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, IGCAR, Kalpakkam. Addressing the gathering, Dr. Mohanty said that the integration of nuclear energy with emerging clean energy technologies such as hydrogen production represents a strategic pathway towards a sustainable energy future. We have a report.
12: Dr. Mohanty said that nuclear power, with its unique ability to provide reliable carbon-free electricity, is ideally suited to support large-scale hydrogen production while contributing to India's energy security, decarbonization goals and long-term sustainable development objectives. The facility has been established as a technology demonstrator to validate the production of hydrogen using nuclear energy through the thermochemical process developed indigenously by Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. Department of Atomic Energy said that the commission of the facility represents the culmination of extensive research, process development, engineering design, equipment fabrication, installation, testing and commissioning efforts undertaken jointly by BARC and IGCR. Shivam Shah, Akashwani News, Delhi.
10: Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan will chair the National Rural Development Conference 2026 to begin in New Delhi tomorrow. The two-day conference will bring together rural development ministers, senior government officials and experts from all states and union territories to deliberate on holistic rural development, review key flagship programs and formulate the future roadmap for rural India. Under the leadership of Union Minister Shivraj Singh Chauhan, this will be the first large-scale national rural development conference of its kind. Jammu and Kashmir police have launched Project Hawkeye, a technology-driven surveillance initiative for round-the-clock monitoring of the Amarnath Yatra route as security agencies intensified preparations for the annual pilgrimage scheduled to commence on July 3rd. A Jammu correspondent reports that the initiative was unveiled by Anantnag police as part of an expanded security grid for the forthcoming Amarnath Yatra. As part of Project Hawkeye, Anantnag police have deployed 5 drone units for aerial surveillance along the Yatra route. As part of a series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe, run by Ambikapur Municipal Corporation. The cafe offers meals in exchange for plastic waste. In the program, we speak to Ritesh Saini, in charge of the Garbage Cafe. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today, evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquake struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction more severe. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. We have a report.
13: Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry said in a statement that as part of the operation, two Indian Air Force C-17 Globemasters aircraft departed for Venezuela yesterday, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. The relief consignment included a self-reliant Indian Medical Task Force, an Indian Army Field Hospital unit with HADR pallets and medicines, 30 tons of relief supplies, 6 tons of medicines and medical equipments, and 2 Bhishm Cube portable hospitals. The 41-member team, comprising experienced rescue personnel and medical professionals, will work closely with the Venezuelan authorities in search and rescue operations, emergency medical care, and humanitarian relief efforts in the affected areas. Interim President of Venezuela, Delcy Rodriguez, has acknowledged India's solidarity following the earthquake, stating that it aligns with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. With Suparna's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
10: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors united by shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA open new frontiers for growth. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command, CENTCOM, said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran. The strikes came shortly after U.S. President Donald Trump told reporters at the White House, "One will find out if there will be consequences for Iran's violation of the ceasefire agreement."
14: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three, at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
10: Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim al-Fikri said that Iran's response to the U.S. attack this time will be swift and decisive. In a series of posts on social media, al-Fikri said that Iran will choose the appropriate time and place to answer back. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire contingent on Hezbollah, halting all attacks and withdrawing from a southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as a first step towards restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital.
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
10: In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India had 7 different goal scorers in the match. Sukhjit Singh and Harmanpreet Singh turned the tide against Pakistan with a goal each in the second quarter before Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal found the back of the net to add 4 goals in the third quarter. Dilpreet Singh hammered the last nail in the coffin in the fourth quarter. India will now face England tomorrow. In the FIFA World Cup 2026, two-time World Cup champion Uruguay were knocked out of the tournament after losing 1-0 to Spain in the final Group H clash in Mexico this morning. With this win, Spain secured the top spot in Group H. Alex Baena scored the decisive goal in the 42nd minute for Spain. Two-time winners Uruguay became the highest-ranked side to crash out in the group stages. In another Group H fixture, tournament debutants Cabo Verde advanced to the round of 32 after a goalless draw with Saudi Arabia in the United States. Earlier, France defeated Norway 4-1 in the Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, United States today. Ousmane Dembele starred with the first hat-trick, helping France finish at the top of Group 1. In the other Group 1 fixture, Senegal thrashed Iraq 5-0 at Toronto Stadium in Mexico. The big win keeps Senegal in contention for a place in the round of 32 as one of the tournament's best third-place teams. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
15: Thank you, Abhishek. The India-UK Free Trade Agreement finds mention in most of the dailies. The pioneer coating Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says transformational growth, prime focus of India-UK FTA. Will implement UCC in Bengal, says Adhikari, notes the Tribune. Hindustan Times, in its editorial piece, Ram Temple Case Deserves Honesty, writes that the government's handling of the allegations will determine the political and spiritual ramifications of this evolving saga. The paper writes, for centuries, Ayodhya has been the epicenter of faith for many Hindus who believe it to be the birthplace of Lord Ram. After the Supreme Court's landmark 2019 ruling concluded, the decades-long Babri Masjid Ram Janmabhoomi title dispute and paved the way for the construction of the Ram Temple, the recent controversy around irregularities in donations threatens to tarnish the temple's status. Australia eyes stronger social media ban for children, reports the Pioneer. NCERT drops French Russian revolutions from class 9th books, informs the Tribune. And finally, Ireland script history with maiden T20 international win over India, reports the Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
10: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 58th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela. Sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ नए फिल्मी गीत। और लीजिए आप सुनिए आनंद राज आनंद की आवाज़ में फिल्म वेलकम टू द जंगल का गीत।

अभी आपने सुना आनंदराज आनंद और अमृता फडणवीस की आवाजों में फिल्म वेलकम टू द जंगल का गीत। और लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में फिल्म यारिया 2 का गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नई फिल्मों के कुछ गीत। और लीजिए आप सुनिए फहीम अब्दुल्ला और शिल्पा राव की आवाजों में फिल्म मैं वापस आऊंगा का गीत।

अभी आपने सुना फहीम अब्दुल्ला और शिल्पा राव की आवाज़ों में फिल्म मैं वापस आऊँगा का गीत, और लीजिए अब सुनिए सुनीति चौहान और शाश्वत सिंह को फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में।

अभी आप नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
1: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहाँ पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेषकर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
2: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
1: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
3: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से खत्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकाल लें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
0: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
4: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आर नरोरा कर्णवास राजघाट रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2,00,000 बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
5: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई।
4: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
6: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों

0: पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
1: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले एक वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
2: ओमान फोर्सेस द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनास पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत कार्यक्रम गौरव भारत देश के। अमर गीत वंदे मातरम के उद्बोधक है कवि महान। भारत भू की महिमा गाकर जगा दिया सोया अभिमान। ओजस्वी कविता से बंकिम चंद अंगार क्रांति बरसाते हैं। अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। राष्ट्र मंत्र गीत के उद्गाता बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 में हुआ था। पिता विशंभरनाथ भट्टाचार्य के निर्देशन में शिक्षा का आरंभ कॉलेजियत स्कूल मिदनापुर में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट कॉलेज की विधि विभाग से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करते ही यशोहर जिले में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हो गए। बात सन 1858 की है। 1888 में भारतीय होने के कारण पदोन्नति न होने पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। बंकिम बाबू पर उनके पितामह और ईश्वर चंद्र गुप्त की रचनाओं और पूर्ववर्ती लेखकों का व्यापक प्रभाव था। 1874 में उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की और 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा। इसके अतिरिक्त मृणालिनी, विश्ववृक्ष, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखे। बंकिम चंद ने सदियों से सोए देश को जगाने का कार्य किया। मातृभूमि के सच्चे सपूत बंकिम चंद देश के महान विचारकों में से एक थे। अद्भुत देशभक्ति के कारण ही वो जन जन के कंठहार बन गए। राष्ट्रगीत के इस अमर रचयिता महान देशभक्त बंकिम चंद चटर्जी को हमारा शत शत नमन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको बता दें आज सवेरे 9:50 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे राग देसी में जुल्फकार हुसैन खां का गायन। सारंगी पर इनका साथ देंगे जाकिर खां। सवेरे 10:05 पर आज आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। आज सवेरे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 2010 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। आज दिन में 11 बजे धरोहर कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक नाटक सच्चाई का वादा। लेखक होंगे मोहम्मद शर्जील खान और प्रस्तुति विनोद आनंदयाल की होगी। दिन में 11:30 पर आज आप सुनेंगे मनभावन कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम गीतमाला। दोपहर 1:15 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। सुनना न भूलिए दोपहर 1:15 पर।
5: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। पेशे खदमत है उर्दू प्रोग्राम, इसको हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम खलूस कबूल कीजिए। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम और हराम के पाक महीने से होती है। मुहर्रम हुर्मत वाला महीना चार पाक महीनों में से एक है। मुहर्रम के महीने में बहुत ही वाकयात पेश आए हैं। इस महीने की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया गया। और इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। इसी तारीख को क़यामत क़ायम होगी। मुहर्रमुल हराम के इस पाक महीने में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं ये अपने आर्काइव्स में मौजूद फीचर, कुर्बानी जो तारीख बन गई। तहरीर शहजादा गुलरेज की है।
2: शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन।

0: ये किसके हिजर में गम का पहाड़ तोड़ दिया कि आज गोद के बच्चों ने दूध छोड़ दिया।
1: मोहब्बत करने वाले जा रहे हैं

صحرا وہ بیابان تباہی وہ راہ کو روکے ہوئے دل

0: अभी आप ये आकाशवाणी रामपुर के आर्काइव में मौजूद फीचर समाप्त कर रहे थे, कुर्बानी जो तारीख बन गई। सदाकार थे सैयद हामिद मियां, रईस रामपुरी, जी आर सैयद, जुल्फिकार आदिल, शहजादा गुलरेज, अख्तर रिजवी और विनोद आनंद दयाल। तरतीबो पेशकश थी विक्रांत चौधरी की। और अब अपने मेजबान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे राग देसी में जुल्फकार हुसैन खां का गायन। सारंगी पर इनका साथ दे रहे थे जाकिर खां। इसके साथ ही उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके नोटपुर कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत आपके द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों पर। आज जैसा कि हमने सुबह सवेरे कार्यक्रम में भी जिक्र किया था कि आज भारतीय हिंदी सिनेमा एक महान हस्ती, एक महान संगीतकार का जन्मदिन है। हालांकि वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया और उनका ये मधुर संगीत श्रोताओं के दिल को जीत लेता है, उनके दिल को छू जाता है। हम बात कर रहे हैं आरडी वर्मन की, जिनका पूरा नाम राहुल देव वर्मन था। वो फिल्मी दुनिया में पंचम दा के नाम से भी विख्यात थे। इनका जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो जैसा हमने पहले बताया कि 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर इनके द्वारा संगीतबद्ध अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म बालिका वधु का गीत। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर पीलीभीत से बिमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा, भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, कोले नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साई गायकवाड़, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नभावकर और विशाल नभावकर, औसा जिला लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो, दस्तगीर, फैज नबी, शाकिर, इस्लाम नबी, बाबा और करिश्मा शेख, तालुका बिलोली जिला नांदेड़ से चांदनी, अयूब, राजे, अमन सैयद और इनके सभी साथी, लदवली मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी और आदित्य कसाना, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जैतेक विर्क और मीका विर्क, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ताई सुनते हैं आप सभी के पसंद पर अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म बालिका वधू का ये गीत।

श्रोताओं, आरडी बर्मन के पिता एसडी बर्मन भी जाने माने संगीतकार थे, ये हम और आप जानते ही हैं, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उनके सहायक के रूप में की थी। आरडी बर्मन प्रयोगवादी संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उनको पंचम नाम से फिल्म जगत में पुकारा जाता था। आरडी बचपन में जब भी गुनगुनाते थे पा शब्द का ही प्रयोग करते थे। ये अभिनेता अशोक कुमार के ध्यान में आई ये बात, और सारे गामा पा में पा का स्थान पांचवा है, इसलिए उन्होंने राहुल देव को पंचम नाम से पुकारना शुरू किया और धीरे धीरे उनका यही नाम लोकप्रिय हो गया, पंचमदा। तो पंचमदा के संगीत निर्देशन में आई सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण, और इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। दिल्ली मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। ग्राम उड़ेला पोस्ट लपरी जौनपुर से कुमारी चंदा, चांदनी कुमारी, आकाश कुमार और इनके सभी साथी। बोरखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा अंकुश मूड़त। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। बस्तौर मुरादाबाद से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश, बिक्की दक्ष, छवि रुद्र, आयुषी, खमानी सिंह और इनके सभी साथी। परेमल कासगंज से आवाज खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अखिलेश सक्सेना के साथ। श्रोताओं, राहुल देव वर्मन यानी पंचम दाने जीपीसीपी के साथ सीता और गीता, शोले, शान जैसी फिल्मों में संगीत दिया। नासिर हुसैन के साथ भी उनका लंबा साथ रहा और उन्होंने तीसरी मंजिल, कारवां, हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात जैसी कई फिल्मों के गानों को यादगार बना दिया। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म यादों की बारात का गीत आप सभी की पसंद पर। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू अरोय और स्वाति मौर्य। बड़ी मस्जिद के पास मिलक भोजपुर आशा, मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज भी और आसिया भी। मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, शिवाजी चौक राजिम, छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ग्राम लोहारी खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश कुमार, राहुल कुमार, विशाल चीला, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद। पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम, नितिन, पालक, कर्ण, गीतू, निहारिका और वंश भत्ता। मौला हलवाई, शिरकुट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। जम्मू में

श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। श्रोताओं, 1970 के दशक की पंचमदा की लोकप्रियता 1980 के दशक में भी कायम रही और इस दौरान भी उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में संगीत दिया था। 1942 से लव स्टोरी उनके निधन के बाद प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के गानों में नई ताजगी थी और उन्हें खूब पसंद किया गया। 4 जनवरी 1994 को उनका निधन हो गया, लेकिन दुनिया को गुनगुनाने लायक बहुत सारे गीत वो दे गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने 1942 लव स्टोरी में यादगार संगीत देकर यह साबित किया था कि उनकी प्रतिभा का सही दोहन फिल्म जगत नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो संगीत दिया वो आज भी हम और आप गुनगुनाते हैं, हमारे मन मस्तिष्क पर राज करता है। तो आइए सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में फिल्म 1942 लव स्टोरी का गीत, जिसको पसंद किया है आप सभी ने। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, साइना नदीम, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और अंशु गौतम, महादेवघाट अमलेश्वर से दोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, राजद्वारा रोड मीठा कुमार रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक, रवि, अर्पित, अभय, रिया और आरुष रस्तोगी, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, जिला अस्पताल के पास रामपुर से गजन खां, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशाह शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी।

आरडी बर्मन को आकाशवाणी रामपुर की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ आज का आपके अनुरोध पर कार्यक्रम समाप्त करने के अब अखिलेश सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

श्रोताओं, सुनहरा दौर के आज के इस कार्यक्रम में सुनिए 2010 के दशक के सदाबहार फिल्मी गीत। पहला गीत सुनिए आदेश श्रीवास्तव की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने और फिल्म है राजनीति।

अभी आपने सुना मीत ब्रदर्स को फिल्म ड्रीम गर्ल में, गीत लिखा था कुमार ने और संगीत दिया था मीत ब्रदर्स ने। और अब सुनिए फिल्म रेडी का गीत राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह को फिल्म कबीर सिंह में। गीत लिखा था मिथुन ने और संगीत दिया था मिथुन ने। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और शाहरुख खान को फिल्म पद्मावत में। गीत लिखा है AM तराज ने और संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत आज सुनिए मोहम्मद शर्जील खान का लिखा नाटक सच्चाई का वादा। प्रस्तुत करता है विनोद आनंद दयाल।

0: समय वापस आती है?
1: जी जी पिताजी, वो तो 8 बजे तक आ जाती थी, पर आज उसे कुछ देर हो गई है।
0: लेकिन बेटे अब तो 9 बज रहे हैं, जाने कहाँ रह गई? बेटा सोनू,
1: जी पिताजी,
0: तेरी माँ कितने घरों में चौका बर्तन करती है बेटा?
1: 3 फ्लैटों में पिताजी।
0: बेचारी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खैर, जिन फ्लैटों में मेरी रानी को बर्तन मांजने पड़ते हैं, कल उन्हीं घरों में वो राज करेगी, राज। अब ये सुई गरीबी से हमारा पीछा ही छूट जाएगा।
2: भैया, आज पिताजी दारू पीकर हमें मारपीट नहीं रहे हैं और ना ही गालियां दे रहे हैं। क्या बात है,
0: ससुरी बड़ी कड़वी।
1: चुपचाप देखता रहे मोनू, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। भैया, बड़े जोर की भूख लग रही है, पता नहीं अम्मा कब आएगी।
0: अरे सोनू, मोनू, क्या कुसर बुसर कर रहे हो वहां? यहाँ, अरे तुमने खाना तो खाया नहीं होगा।
1: नहीं पिताजी।
0: मुझे मालूम था। ले बेटा ले, ये मुर्गा खा। ले मोनू बेटा, तू भी खा।
1: जी जी पिताजी, वो अम्मा आती होगी, वो जो लाएगी वही खा लेंगे।
0: अबे ये खाना, ये तो भुना हुआ है ताजा मुर्गा। वो तो दूसरों के घरों से बचा हुआ बासी खाना लाती है। ले जल्दी से खा ले। हाँ, और हाँ, तेरे उस म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा?
1: ठीक ठीक चल रही है पिताजी, पर मास्टर जी ने नई ड्रेस सिलवाने को कहा है।
0: बेटे अब तुझे उस फर्टीचर स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब वो जो अंग्रेजी स्कूल है ना, अब तू उसमें पढ़ने जाया करना।
1: क्या आप सेंट जोसेफ स्कूल की बात कर रही हैं?
0: हाँ, वही ससुरा अंग्रेजी स्कूल, तू भी अब उसमें जाया करना। बोल, जाएगा ना?
1: क्यों नहीं पिताजी, पर वहां तो बहुत पैसा लगता है, बहुत फीस देनी पड़ती है उस स्कूल में।
0: अरे तो फिक्र मत कर, अरे मैं हूं ना तेरा बाप, मैं दूंगा तुझे फीस और ड्रेस के पैसे। तू भी स्कूल में टाई लगाकर जाया करना। हाँ, एकदम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले बच्चों की तरह। बोल, जाएगा ना बेटा?
1: क्यों नहीं पिताजी, मैं भी जाया करूंगा, फिर मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और अम्मा की खांसी का इलाज करूंगा।
0: शाबाश, ले इसी बात पर दारू का एक घूंट लगा दे।
1: नहीं नहीं पिताजी, शराब पीना बुरी बात होती है।
0: अबे अबे तुझसे किसने कहा साले? शराब पीना बुरी बात होती है? अबे चुप, क्यों रोका मेरा नशा उतार रहा है? अबे छुपा नहीं, अब तक तू नहीं तो एक और दूंगा अभी।
1: मुझे मारता है, अम्मा को आने दे, उससे कहूंगा तूने मुझे मारा था।
0: अबे ससुरे, तेरी माँ क्या कर लेगी? मैं कोई उससे डरता हूँ? अरे मैं उसका मार दूँ? और मेरी जरूरत, वो क्या कर लेगी मेरा? साला माँ का डर दिखाता है।

0: अबे देख सोनू, मेरा मूड खराब मत कर यार, अब चुप जा। ले ले ये मुर्गा खा ले, खा ले बेटा। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, और तू को क्या कर रहा है मोनू? ले तू भी मुर्गा खा, खा ले बेटा, खा ले। हाँ खा लो, खा दोनों जने खा लो, चुप जा। अरे चुप जा, खा ले। अरे अब जाओ, जाकर सो जा, अम्मा भी आती होगी। चुप, रोड़ा बंद कर।
1: तूने घर पर ही ठेका बना लिया है।
0: आओ मेरी रानी, आओ। आ गई तुम? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
1: अरे कुछ तो शर्म कर मुए, कुछ तो शर्म कर। तेरी इन हरकतों का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, कुछ तो सोच।
0: अरे ये दोनों तो तेरे असली बेटे हैं। अरे ये सोनू कह रहा था शराब पीना बुरी बात है।
1: क्या क्या तूने इसे भी दारू पीने को कहा था?
0: हाँ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा। बस समझ ले कि अब हमारे तो दिन फिर गए।
1: हे भगवान, हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। जो तुझ जैसे पियक्कड़ से मेरा ब्याह हुआ, बुआ बच्चों को अच्छी बातों की जगह बुरी बातें सिखाता रहता है।
0: अब ये तेरा टेप रिकॉर्डर भी चल पड़ा। देख यशोदा, देख इस तरह रो पीट कर मेरा भेजा गरम मत कर। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता। हाँ
1: तो तू भी एक बात कान खोल कर सुन ले।
0: हाँ खुले कान मेरे।
1: मैं इनको तुझ जैसा नहीं बनने दूंगी, समझा तू? मैं इन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाऊंगी। हाँ
0: हाँ हाँ, अच्छा आदमी बना लियो, बहुत बड़ा आदमी बना लियो। बड़ा ईमानदारी का ढोल पीटती है। अरे तुझे इस ईमानदारी के बदले मिला क्या ये बता? दिन भर दूसरों के बर्तन भरने बाती, और तेरी मेरी पेट की आग को ठंडा करने के लिए दूसरों की जूठन बटोरती फिरती है।
1: मगर मेरी कमाई मेहनत की है, मेहनत की, समझा तू? मेरे बच्चों के पेट में पड़ने वाला एक एक दाना ईमान से कमाया हुआ होता है। एक दिन तू देख लेना, मेरे तीनों बच्चे कितने बड़े आदमी बनेंगे, समझा तू?
0: अरे तेरी तरह लोगों की गुलामी करेंगे। गुलामी?
1: चुप रह। जो मेरे बच्चों के लिए एक भी बुरी बात कही तो अच्छा नहीं होगा। हाँ
0: हाँ, ये तो बस तेरे ही बच्चे हैं ना, मेरे तो कुछ लगते ही नहीं है।
1: अगर लगते हैं तो तू उनके लिए कुछ करता, उन्हें कुछ सिखाता। सोनू मोनू की ड्रेस को फटे हुए कितने दिन हो गए हैं, तुझे फिक्र है किसी बात की? बस तुझे तो शाम को दारू पीने से मतलब है, और तो कुछ है नहीं।
0: अब मैं तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा जसोदा रानी।
1: हाँ कर देगा बड़ा।
0: तू देखना, अब हमारे बेटे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाया करेंगे। मैं और तू वो सामने वाली जो मल्टी स्टोरी कॉलोनी के सबसे ऊंचे वाला फ्लैट है ना, उसमें रहेंगे। जरा सोच कितना मजा आया करेगा।
1: लगता है तुझे कुछ आज ज्यादा ही चढ़ गई है। रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा, मुझे भी सुबह काम पर जाना है।
0: अरे आज ये साली दारू तो नशा ही पैदा नहीं कर पा रही है। मेरे खुशी की नशे के सामने दारू का नशा एकदम पीका पड़ गया है। अरे यसो,
1: बोल क्या है?
0: कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं? अरे तू सुनेगी तो तू भी नाच उठेगी नाच।
1: आज तू नशे में बहक के उल्टी सीधी बातें क्यों कह रहा है? अरे ये क्या, रोज तो तू थैली वाली शराब पीता था, और ये अंग्री शराब की पूरी बोतल, ये तुझे कहाँ से मिल गई?
0: अरे बस मत पूछ, मत पूछ, पहले घूंट भर लूं। अरे जसोरानी, हमारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई है जिसको मैं बस बता नहीं सकता।
1: तेरे नाम शायद आज लॉटरी का नंबर खुल गया है, तभी कुल छर्रे उड़ा रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
0: अरे मेरा नाम आज इतनी बड़ी लॉटरी निकली है कि बस पूछ मत रानी। अरे अब जाने कहाँ लगी?
1: देख मेरा हाथ छोड़ दे, मैं ये तेरी बेतुकी बातें बाद में सुनूंगी।
0: अरे जसोदा, और जल्दी आ जा, तुझे कुछ दिखाना है भाई।
1: अरे आ तो रही हूँ बाबा, भीगी साड़ी तो बदल लूं, पूरी तरीके से चिपक गई है।
0: अरे ये क्या कर रही है, पलंग क्यों खड़ा कर लिया? अरे अपनी जवानी का थोड़ा सा जलवा मुझे भी देख लेने दे।
1: अरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं फिर भी ऐसी बातें करते, तुझे शर्म नहीं आती है? ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है मुआ।
0: अरे मैं जरा आदमी हूँ, आशिक थोड़े हूँ जो किसी बात से शर्म करूँ। आगे तुझे ब्याह कर लाया हूँ, मेरा भी तो तुझ पे कुछ अधिकार है।
1: बस मेरा जिस्म नोचने का अधिकार है तुझे? आज तक तूने मेरे लिए किया ही क्या है बता?
0: मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार किया।
1: हाँ, मुझसे प्यार किया है, वो भी बस नशे की हालत में। वैसे तो तुझे मेरे अंदर सारी बुराइयां ही दिखती हैं।
0: देख, आज के बाद मैं तुझसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, तुझसे हर हालत में प्यार ही प्यार करूंगा।
1: हाँ, रात को शराब पीकर तू हमेशा ऐसी ही मीठी मीठी बातें करता है, नशे के साथ सुबह को तेरा सारा दुलार भी रफू चक्कर हो जाता है। हाँ,
0: अरे अब यहाँ तो आ, मेरे पास आकर बैठ।
1: ले, बैठ गई, अब बोल क्या कह रहा है।
0: ला, अपना हाथ दिखा जरा मुझे। अरे अरे तेरे हाथ लोगों की जूठन धोते धोते कितने काले पड़ गए जो सुरानी। जब मैं तुझे ब्याह के लाया था ना, तब तू एकदम सिनेमा की हीरोइन लगती थी। अरे अब तो तेरी एक एक हड्डी निकल आई जो सो।
1: क्या बात है, आज बड़ा प्यार जता रहा है। पर कान खोल के सुन ले, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तुझे देने को। हाँ
0: दे? अरे कैसी बातें कर दी है, मैं तुझसे कोई पैसा मांगा? आज मैं इतना खुश हूँ कि तू मुझसे जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा।
1: अच्छा
0: बोल बोल क्या चाहिए तुझे?
1: देगा? तो देख, मेरी साड़ी एकदम फट गई है, दूसरी भी पुरानी हो गई है।
0: ठीक,
1: चल मुझे एक साड़ी दिला दे।
0: बस एक साड़ी? अरे मैं तो तुझे 100 साड़ियां ला कर दूंगा, तू कल चलियो मेरे साथ बाजार।
1: अरे फिर हवा में उड़ने लगा। एक बात तो बता, ये सोनू मोनू बिना कुछ खाए पिए सो गए क्या?
0: अरे मैं को इतना पागल थोड़ी हूँ कि उन्हें भूखा सोने देता। अरे मैंने उन्हें मुर्गा खिलाया, मुर्गा।
1: क्या मुर्गा? तू उन्हें भी मांस मच्छी का आदि कर रहा है? अरे खुद तो बर्बाद है ही, बच्चों को क्यों बिगाड़ने पर तुला हुआ है?
0: अरे चुप भी कर जसो, ले तू भी एक घूंट मार ले, मान ले मजा आ जाएगा।
1: ग्लास उधर कर, खुद तो अपना धर्म भ्रष्ट कर रही है, मेरा भी कर रहा है। मुझे तो भगवान को मुंह दिखाना है ना।
0: फिर उपदेश देने लगी है तू, अपने आदर्शों को बैठ कर चाट, मुझे तो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है।
1: ओह, कितना फर्क है तेरे मेरे सोचने में।
0: अरे तू जिस गरीबी की जिंदगी में पैदा हुई जस्तू उसी में रहना चाहती है, पर मैं अब इस तरह से नहीं रहूंगा।
1: तो फिर क्या करेगा तू?
0: मैं सूची कॉलोनी का एक फ्लैट खरीदूंगा और उसमें मैं और तू फ्लैट हो जाएंगे। इस साली ऑटो की जगह फॉरेन की गाड़ी खरीदूंगा और ठाट से रहा करूंगा।
1: अच्छा, मगर ये तो बता, तेरे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से?
0: देख, वो जो नीली छतरी वाला है ना, वो हम पर बहुत मेहरबान है।
1: अच्छा,
0: आज उसने हमारी झोली खुशियों से भर दी है।
1: वो कैसे?
0: देख, वो बड़े संदूक में मैंने एक बैग छुपा कर रखा है, उसे निकाल ला।
1: उसमें उसमें क्या रखा है तूने?
0: अरे तू निकाल के तो ला जज्जो।
1: अरे ये तो बड़ा भारी है।
0: अरे संभाल के, अरे संभाल के इधर ले गया। हाँ इधर, अरे इधर तो ला। हाँ यहाँ रख। बस अब जरा इसका मुंह खोल कर दे।
1: हाय राम, इतने पैसे, इतना सोना कहाँ से लाया तू? कहाँ से लाया?
0: बस यही मत पूछ, इसमें 500 की गड्डियां तो मुझसे गिनी भी नहीं गई, और ये सोना, एकदम मस्ती। अरे यजू, हमारी तो जिंदगी

0: करके साली। अरे साला तू साला।
1: अरे पर तू मेरी तो सुन, तू इतना सब कुछ लाया कहाँ से? कहीं कहीं तूने चोरी तो नहीं की?
0: जब बोलेगी साली बुरा ही बोलेगी। अरे ये समझ ले कि भगवान ने हमें पूरा कर दिया सब कुछ।
1: देख कैलाश, देख तुझे सोनू मोनू की कसम है, सच सच बता दे मुझे, ये सब कुछ तुझे कहाँ से मिला?
0: ओ तू तो शक की इतनी है कि बस पूछो मत।
1: तो फिर तू सच सच बता क्यों नहीं देता?
0: अच्छा सुन, आज सुबह एक साला पियक्कड़ मेरी ऑटो में बैठा था। हाँ? इतनी दारू पिए था कि उतरते वक्त ये बैग ऑटो में ही छोड़ गया।
1: तो तूने उसे वापस क्यों नहीं किया?
0: अरे तू तो एकदम ही पागल है भाई, घर आई हुई लक्ष्मी को कोई ऐसे लौटाता है?
1: पर वो आदमी उतरा कहाँ पर था?
0: वो एक जो बड़ा सा होटल है ना, उसमें गया था।
1: लेकिन कहाँ पर?
0: अरे वो तो चौपाटी के बाजू है ना, 5 मंजिल वाला बड़ा सा होटल।
1: तो फिर तू ये बैग उसको ढूंढ कर उसके सही मालिक तक पहुँचा देता?
0: अरे तेरा तो दिमाग चल गया है। देख सही कमाई के पैसे लेकर कोई ऐसे नहीं चलता, लोग उसे बैंक में रखते हैं, बैंक में।
1: अच्छा तो फिर ये कैसी कमाई है?
0: 2 नंबर की कमाई, काला धन, ब्लैक मार्केट का पैसा है जसुरानी।
1: हाय दैया, मगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो?
0: अरे वो कर ही नहीं सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि ये गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है जसुरानी। पुलिस के पास जाएगा तो वो पूछेगी कितना पैसा कहाँ से आया बोल।
1: लेकिन जब ये काला धन है तो इसे घर में रखना भी तो गलत है। कल लोग हमसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया?
0: अरे हम यहाँ रहेंगे तभी तो पूछेंगे ना, हम तो सामने वाली कॉलोनी में जाकर रहेंगे, जरा सोच तो कितना मजा आएगा वहाँ रहने में।
1: हाँ सो तो है,
0: सब अलग अलग कमरों में रहा करेंगे जस्सो। हर कमरे में रंगीन टीवी लगा होगा, नौकर चाकर तेरी सेवा में खड़े रहा करेंगे। हाँ नौकर चाकर तेरी सेवा में खड़े रहा करेंगे, और तू और मैं जब गाड़ी में बैठ कर निकला करेंगे तो ये झुग्गी वाले साले आंखें भाड़ भाड़ कर देखा करेंगे। अरे छोड़ अगर मगर, इस बैग को छुपा कर रखते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना लफड़ा हो जाएगा।
1: मगर जब इस काले धन से खरीदी हुई रोटी हमारे बच्चे खाएंगे तो वो कैसे इंसान बनेंगे?
0: अरे फिर तू सती सावित्री बनी, तुझे क्या ये अच्छा लगता है कि तू दूसरों के बर्तन मांगे, दूसरों की गुलामी करे बोल?
1: अच्छा तो नहीं लगता। वो जो कलमुई सिंह साहब की जोरू है ना, वो कह रही थी मुन्नी को मत लाया कर, इसके गंदे कपड़ों से फरस गंदा हो जाता है।
0: देखा देखा इन बड़े लोगों की बात, हमारे बच्चों के लिए ऐसा कहते हैं और फिर उस पर तू कहती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमेशा इस गरीबी में क्यों रहना चाहती है तू?
1: आज तक मैंने अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी और मेहनत की रोटी खिलाई है ना, जब वो इस काले धन की रोटी खाएंगे तो उनका क्या होगा? कुछ तो सोच।
0: अरे देख तू फालतू की बकबक तो करे मत, आराम से सोचा और अमीरी के मीठे मीठे सपने देख।
1: मुझे तो घबराहट के मारे नींद भी नहीं आएगी, कहीं कोई सोते सोते हमारा गला ना दबा दे। पैसे के लिए सुना है लोग जान तक ले लेते हैं।
0: वारी जस्सो तू तो अभी से डरने लगी, जब हम उस कॉलोनी में रहेंगे तो तू कितना डरा करेगी।
1: डर तो लगता ही है ना, मैंने आज तक इतना पैसा कभी नहीं देखा।
0: अरे तू आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। बस सुबह सुबह तू होने दे।

0: मैं तेरा जमीर हूं, तेरी अंतरात्मा हूं। मैं ही हूं जो तुझे बुराई से बचाना चाहता है, लेकिन तू तो चोर निकला, चोर।
1: तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैंने बैग चुराया नहीं, वो आदमी तो खुद मेरी ऑटो में अपना बैग छोड़ गया था।
0: तो तू उस आदमी को ढूंढकर उसका बैग उसे वापस कर देता? बल्कि अच्छा तो यह होता कि तू उस बैग को पुलिस के हवाले कर देता।
1: लेकिन मैं पुलिस से जाकर कहूंगा क्या? मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं हूं।
0: फिर झूठ बोला? तेरे उस पाप के बैग में उस आदमी का पता और फोटो भी तो मौजूद है।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मैं बैग किसी कीमत पर पुलिस को नहीं दूंगा। मुझे मुझे सोने दो मुझे। जा, तुम जाओ यहां से मुझे सोने दो।
0: तेरा घर इस पैसे से बर्बाद हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, और मक्कार मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे हमेशा धिक्कारूंगा, मैं तुझे हमेशा धिक्कारूंगा।
1: मेरे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, मैं अपने बच्चे को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जाओ चल जाओ, सुन दो।
2: अरे ओ कैलाश, अरे तो सोते सोते भी क्यों बड़बड़ा रहा है?
1: क्या हुआ जसवंत? कुछ नहीं। क्या सुबह हो गई?
2: अरे अभी तो रात है, तू ज्यादा पी गया था इसीलिए बड़बड़ा रहा है। सुबह होने में अभी देर है, सो जा तू।
1: अच्छा ठीक है।
2: नाम हुआ सोता है, ना चैन से सोने देता है, सारा दिन की थकी हुई। चलो सो।
0: मैं बच्चों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, अपने बच्चों को बर्बाद नहीं।

0: अम्मा, ओ अम्मा,
1: अब तो उठ जा, सुबह हो गई। क्या काम पर नहीं जाएगी? मुझे स्कूल जाना है, कुछ खाने को दे दे।
2: ए, ओ, सुबह हो गई? अरे, अरे तेरे पिताजी कहाँ है?
1: अरे वो पड़ा तो है।
2: सोनू देख, देख उस हांडी में रात की रोटी रखी है, वो तू खा लेना, समझा? और देख मुझे कहीं अभी जाना है।
1: कहाँ जाना है अम्मा?
2: पुलिस थाने।
1: थाने? क्यों अम्मा, वहाँ तू क्यों जाएगी?
2: तेरे पिताजी का पाप कानून के हवाले करने।
1: पिताजी ने क्या पाप किया है?
2: उसने किसी दूसरे का पैसा लिया है।
1: किसका पैसा लिया है?
2: ये सब तू मत पूछ, ये सब तू मुझ पर छोड़ दे। देख तू स्कूल जा, और अगर तेरे स्कूल जाने से पहले तेरे पिताजी जाग जाए तो उनसे कह देना मैं ये बैग पुलिस को देने गई हूँ।

0: सोनू
1: जी पिताजी।
0: सोनू बेटे, तेरी माँ कहाँ है?
1: जी वो तो थाने गई बैग जमा करने।
0: थाने कब गई बेटा?
1: अभी अभी गई है।
0: ओह, मुझे भी पाप के प्रायश्चित के लिए थाने जाना होगा। हे भगवान, मुझसे लालच में कितना बड़ा पाप हो गया था।

0: ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला?
1: साहब, सब मेरे पति के ऑटो में मिला था। कोई आदमी इस बैग को मेरे पति के ऑटो में छोड़ गया था।
0: कौन था वो आदमी, तुम जानती हो?
1: वो तो नहीं पता साहब, मेरे पति कह रहे थे वो आदमी चौपाटी के होटल में उतरा था। और साहब, इस बैग में ना एक फोटो भी है और एक कार्ड भी है, शायद आपको कुछ मदद हो जाए।
0: अच्छा,

0: ये फोटो, अरे ये फोटो तो एक बहुत बड़े स्मगलर का है जो देश में मादक पदार्थों और सोने वगैरह की स्मगलिंग करता है। क्या क्या इसी आदमी का ये बैग है?
1: ये तो मेरे पति ही बता सकते हैं ना साहब।
0: कहाँ है तुम्हारे पति?
2: मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब।
0: इधर आओ इधर आओ।
2: मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी मेरी इतने पैसे को देखकर नियत खराब हो गई थी। अब मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा हजूर।
0: ये बैग अगर तुम कल रात ही लेकर आ जाते तो एक बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता।
2: मुझसे मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो।
0: अच्छा, आप जल्दी से ये बताओ कि ये फोटो क्या उसी आदमी का है जिसको तुमने कल होटल में छोड़ा था?
2: हाँ, जी हाँ साहब, बिल्कुल वही आदमी है साहब। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, माई बाप माफ कर दो हमको।
1: हाँ साहब माफ कर दो इसको,
2: हाँ
1: हम बहुत गरीब हैं साहब। इतना पैसा देख के बहक गया था साहब।
2: हाँ साहब,
0: हाँ तुम लोगों ने वैसे कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम माफी क्यों मांग रहे हो?
1: क्या
0: क्या
1: मतलब है
0: मतलब?
1: इंस्पेक्टर साहब?
0: अरे भाई, ये पैसा स्मगलिंग का है। कानून स्मगलिंग का माल पकड़वाने वाले को सरकार की ओर से पकड़े गए माल का 10% इनाम के तौर पर देता है।
2: सच साहेब,
0: हाँ बिल्कुल, और अगर वो कुख्यात स्मगलर पकड़ा भी गया तो तुम्हें उसको पकड़वाने का इनाम अलग से मिलेगा।
2: सचमुच साहेब सचमुच, फिर तो हम जसोदा लखपति हो
0: बिल्कुल ठीक कहा तुम
2: जाएंगे।
0: लोगों ने, मगर तुम्हारी इस पत्नी की वजह से तुम्हें ये इनाम मिल रहा है, समझे?
2: हाँ साहेब
0: वरना तुम स्मगलिंग के माल को जमीन में दबाकर खुद अपराधी बन जाते।
2: सच साहेब, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि भगवान ने एक देवी को मेरी पत्नी बनाया है। मुझे मुझे माफ कर दीजिए यशोदा, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। तूने तो मेरी आंखें खोल दी यशोदा, माफ कर दे मुझे।
1: नहीं, मुझसे माफी मांगकर मुझे मत शर्मिंदा करो जी, लेकिन लेकिन आज तुम मुझसे एक वादा करोगे।
2: हाँ बोल, जो तू कहेगी वही करूंगा।
1: तो फिर वादा करो आज से तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, और देखो हाँ, शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाओगे।
2: जसोदा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा और शराब को तो छूंगा भी नहीं।
1: सच?
2: हाँ
0: शाबाश, अगर सभी लोग तुम जैसे हो जाएं तो इस देश से जुर्म का नाम मिट जाएगा। और कैलाश,
2: जी साहब
0: तुमने जो वादा जसोदा से किया है उसे याद रखना।
2: हमेशा हमेशा याद रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा इंस्पेक्टर साहब।

सच्चाई का वादा। अभी आपने मोहम्मद शर्जील खान का लिखा ये नाटक सुना। प्रस्तुति विनोद आनंद दयाल की थी। धरोहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

वन भवन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीत माला। गीत माला के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, पानी हमारी जिंदगी की एक अहम आवश्यकता जरूरत है। किसी ने पानी के लिए क्या खूब लिखा है, ये दरिया कभी घटा पानी, रंग बदले है क्या से क्या पानी, मौज जब आई एक समंदर की, रेत पर प्यास लिख गया पानी, मुस्तरक है ये क्या करिश्मा है, आग मिट्टी हवा फलक पानी, वक्त आखिर के गंगा जल तक एक लंबा है सिलसिला पानी, है उनको रस बहुत अकीदत का, कब पिए देवी देवता पानी, कद्र पहले जमी पे वो कर ले जो खलाओं में ढूंढता पानी, अब भी रोना बचा उन आंखों में जिनमें कुछ भी नहीं बचा पानी। आज गीतमाला में हम कहेंगे इसी पानी की कहानी।

पानी, इसे साइंस में H2O कहा जाता है। जी हाँ, यही फार्मूला अपने अंदर एक सारी दुनिया समेटे बैठा है। यही है वो चीज़ जिसने इस धरती पर जीवन बोया, हमारे घर को खास बनाया। सात समंदर वाली इस धरती में प्राणों का संचार तब होता है जब इन सागरों से उठने वाले बादल नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में धरती पर बरसकर उसके ताप को मिटाते हैं। नन्ही नन्ही बूंदें बड़ी बड़ी उम्मीदें जिंदा कर देती हैं। हर एक किसान का दिल झूम उठता है इन बादलों को देखकर।

जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए। पानी आंखों से नहीं नदियों से बहना चाहिए। श्रोताओं, पानी के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। जन्म से लेकर अंतिम समय में पवित्र जल तक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है पानी। हम भोजन के बिना तो कुछ समय तक रह सकते हैं, पर पानी के बिना जीना मुश्किल है। पानी की कीमत पूछनी हो तो उस किसान से पूछो जिसकी फसल पानी के बिना सूख रही हो, या फिर उस इंसान या पशु पक्षी से जिनकी जान बसती है पानी से। यही वजह है कि पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है और पानी को व्यर्थ बहाना पाप का। ये सही है कि धरती पर 70% भाग पानी है, पर ये पानी हम पी नहीं सकते। हम निर्भर है भूमिगत जल और ये जल संसाधन सीमित हैं। हमारी लापरवाही के चलते जल संकट गहराता जा रहा है। कुएं, तालाब, नदियां सूख रही हैं और आज हमारी आंखों में पानी है। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लिखना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है।

भला कागज की इतनी कश्तियां हम क्यों बनाते हैं, ना वो गलियां कहीं हैं ना वो बारिश का पानी है। दोस्तों कड़वी है पर सच्चाई यही है। अब बारिश का पानी मिट्टी की सौंधी महक और कागज की कश्तियां नहीं लाता, वो सैलाब लाता है और इसकी वजह है हम सब। एक ओर पानी की बर्बादी तो दूसरी ओर जल संरक्षण के प्रति हमारी लापरवाही। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले के जमाने में कई दिनों तक पानी बरसता था पर ऐसे सैलाब नहीं आता था, पर अब तो कुछ ही घंटों की बारिश हमें डुबोने के लिए काफी है। वजह, पहले तालाब कुएं बावड़ी जगह जगह होते थे जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के झुरमुट से घिरे पनघट हर गांव की शान और पहचान होते थे। यहाँ केवल पानी पानी ही नहीं होता था, सामाजिकता भी होती थी, रिश्ते भी होते थे, हमारा जुड़ाव होता था नदियों और तालाबों से। उनको पूजने की परंपरा ऐसे ही नहीं है, पर अब ये सब बीते समय की बातें हो गई हैं। हमारी नदियाँ और हमारे तालाब हमारे लालच और कर्मों का बोझ उठाकर थक चुके हैं और बस हमारी नदियाँ यही पुकार रही हैं।

पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों का कटान और ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज हम गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। एक एक बूंद पानी की बर्बादी हमें विनाश की ओर ले जा रही है। बारिश का इंतजार हम सभी को है। आइए हम सब संकल्प लें कि इस बार बारिश की एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आसमान में बादलों की प्रतीक्षा है और जब बादल आते हैं तो बस हमारे मन से यही पुकार निकलती है।

जल ही जीवन, जल सा जीवन, जल्दी ही जल जाओगे। अगर बची ना जल की बूंदे, कैसे प्यास बुझाओगे। नाती पोते खड़े रहेंगे जल राशन की कतारों में, पानी पर फिर बिछेंगी लाशें लाखों और हजारों में। रिश्ते नाते पीछे होंगे, जल की होगी मारा मारी, रुपयों में भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी। भविष्य के इस रूप से हमें सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम आज और अभी से जल संरक्षण करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज रेणु तिवारी को गीतमाला कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

अब सुनिए सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। कुमारी मेहर, पुत्री इमरान, निवासी मियां सराय राय सत्ती, जनपद संभल, विगत कुछ समय से लापता है। मेहर की आयु करीब 22 वर्ष, कद 5 फीट, शरीर सामान्य रंग सांवला है, ये काला बुरका और पैरों में सफ़ेद स्टॉल पहने हैं, सफ़ेद चप्पल पहने हैं। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें श्रीमती फहीम बेगम, पत्नी इमरान, निवासी मियां सराय थाना राय सत्ती जनपद संभल। दूरभाष संख्या है 9997798061।

अनु पुत्री श्याम सिंह निवासी व थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल। विगत 9 जून से भारतल मदापुर से लापता है। अनु की आयु 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, आंखें काली हैं, ये सलवार सूट पहने हैं। इनके विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें श्रीमती ममता देवी, पत्नी श्याम सिंह, निवासी ग्राम भारतल मदापुर, थाना हजरत नगर गढ़ी, जिला संभल। दूरभाष संख्या है 9761204655।

रीना पत्नी राजेश निवासी थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल विगत 24 मई से लापता है। रीना की आयु 24 वर्ष, कद 5 फीट रंग गेहुआ, शरीर सामान्य, चेहरा गोल, आंखें और बाल काले हैं। ये शलवार सूट पहने हैं। रीना के विषय में सूचना देने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी मिलक थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल। दूरभाष संख्या है 7814819730। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। 12:10 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आंधी फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। ग्राम बोईनापार, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू और उमाबाई साहू। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक महोबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पिंटर। कुल सिटी बरकाना काना से अफताल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजयता मारकंडे, संजय मारकंडे और बीबी

किट्टू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, वसुता बज्रसेन और आदेश कुमार काले, ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, पटना से वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून, वारसी क्लब सिंधौली, मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, ये श्रोता हैं थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, फैजान अली प्रेमी, एहसान अली प्रेमी और आसिफ भाई, गांव खाबरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवन्या कांचव, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और आरती ओम, आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम है आंधी।

गांधी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। मासूम फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वन्या। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और आसना अंसारी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या अरब खुराना और एसके पप्पी। गोरावा पोस्ट किल्लौद एमपी से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुकाबाई, नंदिनी बाई और रुद्र राजपूत। बिलरामगेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। उमर खेड़ से श्वेता सोनी, प्रमिला सोनी और सरिता सोनी। बरली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान और अजीम खान। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप सभी के नाम ये गीत भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है मासूम।

गीत आपके नाम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, घर फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठक्कर, शशि बाला, जग्गी दुआ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। लदावली जिला मुरादाबाद से मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। डोंडी लोहारा से प्रभा जमुरिया, अनुश्री और पूजा डॉली जमुरिया। चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली और पथिक डोम। प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोटके, रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से। पटियाली रोड गंडनवारा से आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। शहबाजपुर कला कस्बा पाकबड़ा जिला मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईस अनाज, मुजक्किर बाबू रईस, रईसा मजाहिर, मजहर आसिम और सुमैया महक। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नदीम इदरीसी, नईम इदरीसी और असद बाबू। ये श्रोता हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। वार्ड नंबर एक पुफाली यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। बुलडाना वर्चिंगी महाराष्ट्र से अमोल

मानकर शोभा ताई मानकर दीपाली अशोक कुमार बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर शशिकला और सुमेत कुमार कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक विमला देवी अमरजीत सुंदर योगेश कुमार दीपक कुमार और पूजा खट्टक आप सभी के नाम ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म का नाम है घर

घर, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। ये गीत है फिल्म बुढ़ा मिल गया से। ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना, एटा रोड गंजुनवारा से बीपी गौतम और सरिता गौतम, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोट के, नंदा बोट के, हनुमान बोट के और उत्तम जमदाड़े, नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। ये श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और राज एस टी अंसारी, शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौर और कविता गौड़, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध, सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर से सुरेश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम, सदानंद विराज स्वीट, अंशुमन और बीबी ओवी, सहारनपुर से सुरेश डुकर और संदीप डुकर, गौरैया जालंधर से दीपक सोनी और राजू सोनी, जेल रोड झांसी से आशा जाधव और प्रभा जाधव, डोंडी लोहरा बालोद से प्रभा राधिका मुखर्जी और डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। आप सभी के नाम ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: अच्छा
1: अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?

0: मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: नल्ला तुम हो ओ दिलरुबा।
1: और अब गीत आपके नाम का अगला गीत, हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, चंद्रनगर सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़ और एस के सरगम, मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद बारसी, अनम अब्बासी और यशव अब्बासी, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, छिंदवाड़ा से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, हर्षिता, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव, साथ हैं संगीता जाधव, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुण कुमार, तरुण यादव और श्रेणिका, साथ हैं श्री निजा, करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना, प्रणय और हीरामन शेंदी, साथ हैं प्रसिद्धि, गंज जुनवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और अयाज अंसारी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुक्कू भाविक सिक्का, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कर्मनिशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, करणवीर हाउस भूचो कैचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिंधु, एकम, अभिजीत, अभिजोत और दमन, आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है किनारा।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव, गंज डुंडवारा से खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सबिया मिकाइल और जैनब मुजावर, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी, चेतन मनवर, विशाल और बेबी प्रियांशी। ये श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, बुल्की वैली और फलना झा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी और हर्षिता देशमुख। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर, अंसारी जावेद, शास्त्री नगर बीर शहर से किशन सपकाला, शाह सोनिया और विशाल सपकाल, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका वंश बत्ता,

कारवां फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अगर तुम ना होते। ये गीत इन सभी श्रोताओं के नाम, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शानुर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, कलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतिश और मैक्स, आप सभी के नाम। ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हेलो फरमाइश, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम अब तक पहुंचेगा 1:15 पर। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 आज शाम के साथ।

ये वाणी कार्यक्रम में आज आकर्षण होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। कृषि जगत प्रसारित होगा 6:20 पर। इसमें आज चर्चा होगी बैंगन फसल में कीट नियंत्रण पर। कृषि संकेत कार्यक्रम में गन्ने की फसल में सुरक्षा के उपाय आपको बताए जाएंगे। समय याद रखिएगा 6:20।

छांव बरगद की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। इसमें आज सुनिएगा श्री विनय कुमार मित्तल से अनुभव प्रधान भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे असीम सक्सेना। सुगम संगीत में 7:31 पर सुनिएगा कुंदन सिंह के स्वर में भजन।

गीत गाता चल व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइश एफएम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8 बजे। 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती दिल्ली केंद्र से रिले होगी और दिल्ली केंद्र से ही 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, 1:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 1:10 हुआ चाहते हैं। इलाकाई खबरें थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होंगी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया
2: लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इकतसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए।
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
2: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ

0: ने एफआईआर के इंद्राज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। यह तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकाम को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाजत दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरकी उत्तर प्रदेश के कई अजला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप अपने दिल की कोई बात हमारे साथ करना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो डायल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-2324-326। हम कर रहे हैं आपकी कॉल का इंतज़ार। और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो रेणु तिवारी जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश कानपुर के पास में पड़ता है, जिला लगता है, छोटा सा जिला है, तो वहीं कर रहा हूँ।
0: सतीश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, अक्सर आपके साथ हमारी फोन पर बात होती है, ये बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। काफी दिन से जो है डाइविड वाले प्रोग्राम काम से देखता से इसलिए कॉल नहीं लगा पाई, लेकिन काम तो खेती बाड़ी चल रहा है, धान की तैयारी चल रही है।
0: बिल्कुल, धान की तैयारी चल रही है और बारिश का इंतजार हो रहा है।
1: हाँ, बारिश का इंतजार हो जाए तो बारिश में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो धान लगा दें, देगी खेतों में तो पौधे बढ़ेगी, धान के बढ़ने की तैयारी है, लेकिन बारिश का इंतजार कर रहे हैं। फिर बारिश नहीं होगी फिर तो समरसेबल से सिंचाई करेंगे।
0: बिल्कुल, आज आपका फोन लगा है। हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनना था आपको?
1: फोन लगा तो आज गाना है दिल, गाने बोलो और प्रिय प्रिय है, और जितने सॉन्ग सुनने वाले हैं सबको वहाँ डेडिकेशन करता हूँ
0: जी।
1: धन्यवाद मैडम जी,
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी करने लीजिए। सुनिए

0: हेलो
1: हेलो हेलो फरमाइश
0: हेलो फरमाइश
1: मैम जी, आदाब।
0: आदाब।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेतान से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: कामिल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप?
1: बस मैम एकदम अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप बताइए मैम, आप कैसे हो?
0: आजकल काम कैसे चल रहा है आपका?
1: मैम काम अच्छा चल रहा है।
0: आज फोन लगा है आपका। हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें?
1: मैम फिल्म का नाम है बिच्छू और गाने के बोले इश्क की जंजीरों में गिरफ्तार होना है,
0: जी
1: ये सॉन्ग सुनवा देना मैम। और साथ में कुछ सुनने वाले मैम, मोहम्मद
0: बिल्कुल।
1: गालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, ये सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश, क्या
0: हेलो फरमाइश,
1: माता, कैसे
0: आदाब।
1: हैं आप?
0: हम अच्छे हैं। हम तो आपको पहचान गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप फिर भी अपना परिचय दें।
1: जी, मैम कहते हैं कि हर बाद में मिलूंगी, कलियों पे मंडराना काम है मेरा। हर बाद में मिलूंगी, कलियों पे मंडराना काम है मेरा। गुलाब है मेरी मोहब्बत, इसीलिए तो शमा परवीन नाम है मेरा।
0: शमा, हेलो फरमाइश प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे बात हो रही है।
1: थैंक यू मैम। और मेरी भी बात काफी दिनों में, जी हाँ, हो रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम मैं जुड़ी हूँ 12 बजे से आपके साथ, तो आपके जो नगमे चले बहुत ही अच्छे लगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। ये
1: और मैम
0: बताइए,
1: एक खुशी की बात बताना चाहूंगी आकाशवाणी के जरिए, कि मैं एक रेडियो की आरजे बनी हूँ आकाशवाणी के जरिए। और मैम मंगलवार के दिन का प्रोग्राम, मेरा फोन प्रोग्राम बहुत ही सराहा गया, तो इसके लिए मैं धन्यवाद आकाशवाणी रामपुर को करूंगी।
0: बहुत अच्छी बात है कि आकाशवाणी से प्रेरणा लेकर आप भी आज एक मंजिल तक पहुंची हैं। आपको आपकी मंजिल मिली है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको।
1: और मैम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है श्रोताओं से बात करना, और जब मुझे तारीफें मिलती हैं और फीडबैक मिलते हैं, तो मैं फख्र करती हूँ कि मैं आकाशवाणी रामपुर की श्रोता हूँ।
0: बिल्कुल, आज आपका फोन लगा है तो कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: मैम मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, अगर श्रोता मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है रेडियो
0: बिल्कुल,
1: DF1।
0: आपके श्रोता आपसे रेडियो पर जुड़ेंगे। फिलहाल आज आपने यहाँ पर फोन किया है तो हमें यहाँ पर गीत बता दीजिए, क्योंकि और भी
1: मुझे
0: श्रोता
1: मैम
0: लाइन में लगे
1: नाम
0: हुए
1: है
0: हैं।
1: मेरे नियाज़ो नमाज,
0: जी,
1: और गीत के बोल रहे हैं तेरे दर पे झुके मेरा सर।
0: आपकी फरमाइश हम
1: और
0: पूरी कर
1: सभी
0: रहे
1: भाई
0: हैं।
1: को मैं ये डेडिकेट करना चाहूंगी मैम।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत दूर से जुड़े हैं।
1: जी हाँ, मोबाइल ऐप पे सुन रहा हूँ कार्यक्रम में आपके।
0: बिल्कुल, कुछ अपने शहर के बारे में बताइए हमें।
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर मतलब दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। शिप्रा नदी के किनारे ये शहर बना हुआ है और सावन महीने में तो यहाँ पर काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं बाबा भोलेनाथ को मतलब जल चढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल, और यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होता है उज्जैन में।
1: जी बिल्कुल, 2028 में महाकुंभ लगेगा तो उसकी अभी से मतलब काफी तैयारियां कर ली गई है। रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एरोप्लेन की भी मतलब यहाँ पर सुविधा कर दी गई है।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी हम किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ अनुशासन बहुत महत्व रखता है। अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ पर के आने पर मतलब बहुत सारी सुविधा है और मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पे महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो आपको कोई मतलब असुविधा हुई, सारी सुविधाओं का मतलब श्रद्धालुओं का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है।
0: बहुत अच्छी बात है। आज आपका फोन लगाया, लो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें?
1: जी हीरो नंबर वन फिल्म का सुनवा दीजिएगा, सोना कितना सोना है।
0: जी
1: जी, और एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे।
0: बताइए
1: जी, जैसे कि एक अभी प्रोग्राम चल रहा है हेलो फरमाइश, ये दिन में आता है और एक शाम को आता है यू वाणी में फोन इन प्रोग्राम, इसके अलावा क्या रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलता है कि आकाशवाणी रामपुर में?
0: ये हमारे सजीव फोन इन प्रोग्राम होते हैं, जिस समय हमारा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है उसी समय कॉल करना होता है।
1: जी इन दोनों का तो पता है, इसके अलावा पूछ रहा हूँ।
0: इसके अलावा हेलो रामपुर होता है हमारा
1: जी, वो
0: सोमवार को और शुक्रवार को होता है।
1: सोमवार को शुक्रवार को दिन में आता है, रात को आता
0: नहीं, ये रात में आता है 10 बजे से।
1: अच्छा,
0: तो इसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं।
1: जी
0: जी, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी कैसे हैं आप?
1: ठीक मैडम, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। परसों खूब पानी गिरा मैडम, और आज दो तीन दिन से बादल पानी बादल या धूप इस टाइप का कर रहा, पानी तो कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन बादल बादल कर रहा है, इस मौसम बनाया।
0: बिल्कुल, वहाँ पर मानसून की दस्तक हो गई है शायद।
1: जी मानसून की दस्तक हो गई मैडम, लेकिन जब भी मतलब मानसून बढ़िया से बनेगा तो झमाझम पानी गिरेगा, लेकिन मौका नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल, अभी यहाँ पर मौसम के मेहरबान होने का इंतजार कर रहे हैं, मानसून का इंतजार हो रहा है।
1: जी मैडम, बस गाना सुनते हैं, सुनेंगे तो मेरे को लगता है मानसून वहाँ भी आ जाएगा।
0: जी बहुत अच्छी बात कही आपने। आज आपका फोन लगाए, हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें?
1: फिल्म का नाम है मेरे महबूब और गीत की बोले थमती बरसत, अब तो मुझे अपने साजन के पास जाना है, गायिका हूँ अलका याग्निक। और सबसे पहले गीत आपको के विशेषता को पूरे श्रोता को आकाशवाणी रामपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, आपके सैनिकों को, स्टाफ कर्मचारियों को, सभी दोस्तों भाई बहनों को, हेलो जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को निवेदन करो मैडम। फोन स्वामी के धन्यवाद,
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: मैडम बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, हेलो, फरमाइश।
0: जी हेलो, फरमाइश।
1: पहले आपको नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जिला अमरोहा नई बस्ती पतरी खालसा से बाहरुल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ। धन्यवाद।
0: बहारुल भाई, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं मैम। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, 12 बजे से लेकर प्रोग्राम सुना 1 बजे तक,
0: जी
1: और 1 बजे से लेकर अब तक प्रोग्राम सुनना है तो अच्छा लग रहा है मैम। आपने जो सभी श्रोताओं को शामिल किया इस प्रोग्राम में तो अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में भी सभी श्रोता बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है।
0: हमारी कोशिश होती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।
1: हाँ देखिए, क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया आकाशवाणी को सुनते हुए, तो अच्छा लगता है। आपके तो वहाँ के जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं तो जो एक कोशिश ये बनी रहती है किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहें, चाहे वो ईमेल का माध्यम हो, चाहे फोन इन प्रोग्राम हो, चाहे आपका पत्र मिला प्रोग्राम हो, सभी प्रोग्राम
0: बिल्कुल,
1: अच्छे होते हैं।
0: एक लंबी यात्रा तय की है। जहां पहले हाथ से लिख के खत डाले जाते थे, चिट्ठियां आती थी, वहीं अब ईमेल का और व्हाट्सएप मैसेजेस का दौर आ गया है।
1: हाँ जी, आज देखिए क्योंकि ये जो आपने जो प्रोग्राम पेश किए हैं तो अच्छे लगे हैं। देखिए ईमेल के और व्हाट्सएप के उन प्रोग्रामों में हम मैसेज भी कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं, तो इन दिनों शामिल भी हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे पास इस टाइम पर चिट्ठियाँ नहीं मिल भी नहीं पा रही अमरोहा में, तो
0: जी
1: चिट्ठियाँ हम डाल नहीं पा रहे, तो
0: बिल्कुल,
1: इसलिए
0: समय के
1: अच्छे
0: साथ तकनीक बदली
1: लगे।
0: है, लेकिन जी बिल्कुल, और जो हमारे श्रोताओं का प्यार है लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदला है। उनका साथ लगातार हमारे साथ रहता है और हमारे श्रोता नए नए तरीकों से हमसे जुड़ते हैं।
1: जी हाँ, चलिए कोशिश करते हैं।
0: जी आज आपका फोन लगा है। हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवाते हैं आपको?
1: फिल्म का नाम रहेगा रघुवीर, और गाने के बारे में बोल रहेंगे चोरी चोरी तेरा मेरा बन गया अफसाना, ये गाने के बोल रहेंगे।
0: जी
1: और घर के कुछ नाम थे मैम,
0: बिल्कुल,
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, दुबी अली सिद्दीकी, शिपान सिद्दीकी, नाबिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेव चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, महेश ब्रिकेन से, भाई इकराम तरीन साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दौलतपुर मुरादाबाद से, मुकेश कश्यप जी हैं, राशिद अंसारी हैं, पागवाड़ा से मुजाहिर अंसारी हैं, और थाना टीम मोहल्ले से इरफान खान साहब।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, लोकेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कैसे हैं आप?
1: बस मैडम जी मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आकाशवाणी रामपुर को मोबाइल ऐप प्रसार भारती के माध्यम से सुनते रहते हैं। जब से प्रसार भारती का ऐप आया है, जब से आपके प्रोग्राम में मतलब हेलो रामपुर में मैं तो जरूर जुड़ता हूँ मैडम, और आपके प्रोग्राम सुनता हूँ मैडम।
0: बिल्कुल, आज आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें?
1: गाना सुनना है मैडम जी, आज ये 27 जून है, 27 जून को एक संगीतकार है, बहुत ही पुराने संगीतकार है जिन्होंने, इनका नाम है आर डी बर्मन साहब
0: जी।
1: तो आर डी बर्मन साहब की आज जन्म जयंती है, तो आर डी बर्मन साहब ने एक गीत गाया है, बहुत ही सुंदर गीत है उनका। फिल्म का नाम है खिताब, और खिताब फिल्म के गीत के बोल हैं, धनों की आंखों में रात का सुरमा, चांद का, ऐसा कुछ गीत है मैडम
0: जी।
1: और इस गीत को आर डी बर्मन साहब ने गाया है, संगीत भी उन्होंने खुद ही तैयार किया है मैडम इसका। और आर डी बर्मन साहब का क्या कहना, आर डी बर्मन साहब ने जो संगीत जितना भी पुराना बनाया है, सबसे पहले जो ड्रम बजाए जाते हैं ना, जो संगीतकार जो ड्रम की शुरुआत ही आर डी बर्मन साहब ने की थी अपने म्यूजिक में।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने श्रोताओं को। आर डी बर्मन साहब का नाम संगीत की दुनिया में अमर है, वाकई में जितने प्रयोग उन्होंने किए हैं शायद ही किसी ने किए हों संगीत में।
1: हाँ, उन्होंने सभी मतलब अलग अलग म्यूजिक बनाने का प्रयोग किया है उन्होंने, और सभी फिल्मों में जितने भी उनके गीत हैं सभी सुपर हिट गीत थे उनके।
0: बिल्कुल, आज हेलो फरमाइश में आप कौन सा?
1: कुछ मित्र भी हैं मैडम जी मेरे जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, राजेंद्र जी हैं हमारे बरेली से, सोनू जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, और हमारे मित्र है रामशरण विश्वकर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश के, और शाहनूर अंसारी जी हैं वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, और हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के लिए गीत रहेगा मैडम।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।

श्रोताओं, हमारा और आपका आज का साथ यहीं तक। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात के वादे के साथ। आज रेणु तिवारी को दी जन्मति नमस्कार।

0: Key & Center in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a three-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट 175 मिलियन डॉलर पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसकी भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
6: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
6: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
7: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
8: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को

0: हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले आईएनएस सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

संघर्ष। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम की आवाज में। आइए अब सुनते हैं ये गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। फिल्म का नाम है क्या यही प्यार है।

क्या यही प्यार है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

ये दिल आशिकाना, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सोनू निगम, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है क्या कहना।

क्या कहना, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।

हमको तुमसे प्यार है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक FM 102.9 MHz पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां 1 महीने में 1 बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी

0: में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है, और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगर गाँव से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विद्यार्थी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से। एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओहो भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में अब।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शांत से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो, गांव जाकर सेवा करने पर तुले हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताक के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह आदत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी घुल घुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
1: हाँ

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस दादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहे तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा तो ये बात है,
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
4: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी?
4: पी लो।
1: मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द, अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए, अभी आई।
4: पानी,

0: तो डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा?
0: हद है भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
0: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
0: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
2: जानम्मा
0: जी
2: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा।
3: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
0: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
1: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
0: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
1: अच्छा अच्छा
0: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
1: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
0: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
1: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
0: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
1: तो
0: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
1: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
0: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
1: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
0: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
1: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
0: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
0: ये बात है डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं, मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा, घर में चलो ना नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी बात तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ?
4: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बस ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर

0: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
0: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
2: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
0: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आई डॉक्टर अम्मा,
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही, और अगर तू बाज नहीं आएगी ना तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो?
2: आ?
0: अरे कोई है? अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे। कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
3: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
7: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
6: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप अब शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973
3: में
2: हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी।
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी। उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
2: अच्छा।
3: मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात
2: हुई,
3: ओपनिंग हुई दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो
2: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी।

0: का और शंकर जयकिशन का।
1: अच्छा
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूँ, क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे। पूरा
1: अच्छा
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं
0: नहीं,
1: देते थे।
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे,
0: यही काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: करता।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहां के लिए आया था। अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहां बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी,
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब
1: महबूब
0: आया।
1: आया।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा। झाड़ू, कटका, पोछा, जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत नहीं
1: परेशानी नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच
1: दो
0: ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे,
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
0: गुम,
1: क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए, और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहां आता था बंबई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश
0: भी
1: हो
0: एक
1: जाए।
0: ऊर्जा आ जाती थी, एक
1: हाँ, लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा,
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन
1: नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता है,
0: प्रति ना, इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है,
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे, क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
0: जी
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया, मुझे

0: मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
1: जी, खैर ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा
0: उनके जैसा हो सकता है,
1: जी।
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
0: जी
1: आपने उनको अपना उस्ताद माना हजरत
0: जी जी
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं नहीं आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी
0: बताइए।
1: क्योंकि
0: चलिए।
1: ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के
1: इतने
0: बाद भी?
1: हाँ और नहीं आया।

0: तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
1: फिल्मों की
0: फिल्मों, लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो
1: हाँ
0: लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त टू व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा, और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले
1: तो
0: मुझे।
1: हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था,
0: नहीं,
1: वो कोई और
0: वो
1: था
0: कोई और था।
1: जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी जी
1: तो। तो
0: जी
1: बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही है कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई
0: जी
1: थी,
0: जी
1: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
0: देखिए,
1: तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए,
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए। और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई, और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे, वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे। वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई। तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले,
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना।
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाकिनी जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: पर्वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ। हाँ, आपका
2: जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
2: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहां सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने
1: वो
2: वहीं
1: तो
2: से सीखा।
1: वाला थे किशोर कुमार
2: बहुत बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
2: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी?
2: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा,
2: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी।
2: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूं, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना

0: जाना नहीं, क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
1: हाँ
0: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूं। तो बोले, अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
0: मैंने कहा, जी नहीं, मैं कल भी नौकर था, आज भी नौकर हूं। मैं कल भी आपको मालिक समझता था, आज भी है। बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा,
1: अरे क्या बात
0: और
1: है
0: उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान
0: जी जी
1: संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को,
0: जी
1: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
0: नहीं,
1: था?
0: मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था। और गाना था, दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा गीत?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: क्या बात है
0: की।
1: ये गीत तो हर एक के दिलो
0: जी
1: दिमाग में है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
0: इस
1: जाते
0: गीत
1: हैं।
0: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
1: अच्छा।
0: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब, जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार, अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर, ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली, लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था।
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है? मैंने कहा, भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या?
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी,
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया? हाँ।
0: और उन्होंने कहा कि सर, ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: अब
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा, भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले, नहीं, सर लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा, मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैंने लिखा, तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ।
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की।
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला, और वो गाना था, तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
1: क्योंकि तुम वो
0: हटके। तो
1: हटके।
0: ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ।
0: तो हम लोग

0: पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा,
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला
1: सुंदर
0: है,
1: इसमें
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म
1: सबसे
0: का।
1: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही
0: जी
1: दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
0: बहुत
1: उनके
0: बड़ी बात,
1: दिमाग
0: बहुत
1: में डाली,
0: बारीक काम था
1: बहुत
0: ये,
1: बारीक
0: बारीक
1: काम
0: काम था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये पैंतरा क्या था और किस
1: देखिए,
0: तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह

0: पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई। और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
1: बहुत
0: ओढ़ली पैंतरा
1: कूल, बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हर एक को समझना आसान नहीं था।
0: जी जी
1: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस
0: जी
1: गीत
0: जी
1: में गवाया,
0: जी
1: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई, और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
0: ये
1: कहानी होती है।
0: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू के
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, और नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा।
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, और मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला
0: गया
1: जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूं ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से हम मेरे पास काम वाम नहीं है तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: इनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है,
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं, थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार मैं बहुत परेशान हूं, तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो, मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं,
1: अच्छा।
0: हार क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी अदरवाइज वो नहीं मिलेगी, हाँ तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती,
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद

0: बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती है
1: हैं।
0: सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन
0: दादा
1: के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं
0: गाते
1: जी,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते।
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी, मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था, तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब जाके
1: जरूरी।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया ऐसा कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माय फ्रेंड गणेशा, अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो है ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी,
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए, तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें, तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है, तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी,
0: हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
0: जी
1: भले बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा, तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके
0: हाँ अच्छा
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: हटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं जितने बड़े हमारे बुजुर्ग

0: फिर झटका लगा,
1: हाँ
0: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात, अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही
0: मुझे
1: बात
0: एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि मुझे
1: बिल्कुल
0: भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती
1: हाँ
0: हैं, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं,
1: जी
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब
1: हाँ
0: लड़का क्या जवाब दे, दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
1: जी
0: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना,

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती मुंबई के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो आपके और हमारे बीच है, यानी दोस्ती का रिश्ता, जो जिंदगी का सबसे सुंदर रिश्ता होता है। दोस्ती वही रिश्ता है जो प्यार, विश्वास और अपनापन सिखाता है। यह रिश्ता किसी बंधन या मजबूरी से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ता है। एक सच्चा दोस्त हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। जब हम खुश होते हैं तो वो हमारी खुशियों को दोगुना कर देता है, और जब कभी हम दुखी होते हैं तो वो हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारी जिंदगी में दोस्ती की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। स्कूल में साथ पढ़ना, खेलना, टिफिन बांटना और छोटी छोटी बातों पर हंसना, यही दोस्ती की सबसे सुंदर यादें होती हैं। वक्त के साथ साथ हम अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। कोई कमाने जाता है तो कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने जाता है, लेकिन सच्चे दोस्त उनके साथ बिताया हुआ पल हमेशा याद रहता है। और साथियों, एक अच्छा दोस्त हमें सही और गलत का फर्क भी समझाता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें प्यार से समझाता है, या जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हमारा साथ नहीं छोड़ता। सच्ची दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है।

बात कर रहे हैं दोस्त और दोस्ती से जुड़े खूबसूरत रिश्ते की। आज के वक्त में मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से लोगों से जुड़ना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। हमारे पास सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त तो होते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही होता है जो ज़रूरत पड़ने पर बिना बुलाए हमारे साथ खड़ा हो जाए। दोस्ती केवल संदेश भेजने या तस्वीरें साझा करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और हर सुख दुख में साथ निभाने का नाम है। दोस्ती हमें कई अच्छे बातें सिखाती है। ये हमें संयोग करना, दूसरों की मदद करना, माफ़ करना और विश्वास बनाए रखना सिखाती है। एक सच्चा दोस्त कभी भी हमसे जलता नहीं है, बल्कि हमारी सफलताओं पर दिल से खुश होता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी अपने दोस्त को उसका दिल ना दुखाएं। हमें अपने दोस्तों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके विश्वास को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है। अगर दोस्ती में सच्चाई और सम्मान हो तो ये रिश्ता जिंदगी भर साथ रहता है। और कहा भी गया है कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। ऐसे दोस्त जीवन की सबसे बड़ी दौलत कहलाते हैं। तो आइए साथियों, आज ये संकल्प लें कि अपने दोस्तों की कदर करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में उनका साथ देंगे, क्योंकि दोस्ती ही वो रिश्ता है जो जिंदगी के सफर को आसान और खुशहाल बनाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं नव्या अग्रवाल और स्वास्तिक मिश्रा।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. स्वागत है आपका अपने पसंदीदा शो युववाणी में, जिसे लेके आपके सामने हाजिर हूँ मैं, स्वास्तिक मिश्रा.
1: और मैं नव्या अग्रवाल. दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और चेहरे पे मुस्कान होगी, और इसी मुस्कान के साथ आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपने फेवरेट शो युववाणी का. तो फिर बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम, आज के सवाल के साथ.
0: तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है?
1: और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी फेसबुक पेज पर, और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे जवाब. सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में.
0: वैसे नव्या, जब भी हम किसी बड़े ब्रांड का नाम सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि देश की इकोनॉमी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के दम पर चलती है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे आसपास मौजूद छोटी छोटी फैक्ट्रीज, लोकल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स भी लाखों लोगों को रोज़गार देने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं.
1: और शायद इसी वजह से हर साल 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि MSME डे मनाया जाता है. ये दिन हमें याद दिलाता है कि देश की आर्थिक प्रगति में छोटे उद्योगों को की कितनी बड़ी भूमिका है.
0: मतलब जो छोटे बिजनेस और लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका योगदान हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है.
1: बिल्कुल, MSMEs सिर्फ सामान बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, नए रोज़गार पैदा करते हैं और ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक लोगों को आत्मनिर्भर बनने का सपना देते हैं.
0: वैसे सच कहूँ तो आजकल तो बहुत से युवा भी छोटे स्तर पर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं. कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है, तो कोई हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो कोई नई सर्विसेज शुरू कर रहा है.
1: हाँ स्वास्तिक, और यही MSME सेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है. कम संसाधनों से भी लोग नए आइडियाज़ को हकीकत में बदल रहे हैं और दूसरे के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं.
0: मतलब छोटे उद्योग सिर्फ कारोबार नहीं करते, बल्कि कई लोगों के सपने और मेहनत को भी आगे बढ़ाते हैं.
1: बिल्कुल, किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़ी कंपनियों से नहीं बनती, बल्कि उन लाखों छोटे बिजनेसेस से बनती है जो अपने प्रयासों से विकास की नई कहानियाँ लिखते हैं.
0: वैसे अगर छोटे व्यवसाय का सही सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहे तो वो देश की तरक्की को और भी तेज कर सकते हैं.
1: और यही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस की सबसे बड़ा संदेश है कि हर छोटा बिजनेस, हर नया विचार और हर मेहनती बिजनेसमैन देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
0: और दोस्तों, इसी के साथ अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज है सैटरडे और आज है हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम कॉल के जरिए आप सभी से जुड़ेंगे और करेंगे खूब सारी बातें. हमारा फ़ोन नंबर है
1: साथियों, हमारा फ़ोन नंबर है 0595-2324-326. तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हमें आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.

0: साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दैनिक कार्यक्रम कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: साथियों, कुछ खास है आज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने भारतीय एथलेटिक्स को एक नई पहचान दी और लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा भी दी। आज 27 जून को हम भारत की महान धाविका पीटी उषा का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें प्यार से प्योली एक्सप्रेस और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है।
3: पीटी उषा का जन्म केरल के एक छोटे से गांव प्योली में हुआ था। साधारण परिवार और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बचपन से ही खेलों के प्रति अपना जुनून और प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। उनके जीवन का सबसे यादगार पल 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में आया, जब वो 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल तक पहुंचे। वो पदक जीतने से केवल 100वें सेकंड से चूक गईं। भले ही वो मेडल नहीं जीत सकीं, लेकिन उनके शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान भारतीय एथलेटिक्स की ओर खींच लिया।
0: अपने करियर में पीटी उषा ने एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए कई पदक जीते। साथियों, उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी भी दुनिया के बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।
3: उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी तेज रफ्तार नहीं थी, बल्कि उनका अनुशासन, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाला जज्बा भी था। उन्होंने उस समय इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जब खिलाड़ियों के लिए आज जैसी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं थे।
0: खेल से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने खेलों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण अकेडमी की स्थापना की, जहां आज भी खिलाड़ी अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं।
3: दोस्तों, पीटी उषा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास मेहनत करने का हौसला, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।
0: तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों से प्रेरणा लेने का संकल्प भी लेते हैं।
3: तो दोस्तों, कुछ खास है आज में, चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सैन्य अधिकारी के बारे में जिनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में साहस, नेतृत्व और दूरदृष्टि के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैम मानेकशॉ की। उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं एक ऐसे सेना नायक को जिन्होंने अपने नेतृत्व और रणनीति से भारतीय सैन्य इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी।
0: सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और अपने नेतृत्व कौशल के लिए देश और सेना दोनों का विश्वास हासिल किया।
3: उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा है। उस समय वो भारतीय सेना के प्रमुख थे और उनके नेतृत्व में भारत ने एक निर्णायक विजय हासिल की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ, जो दक्षिण एशिया के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
0: सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी खासियत केवल उनकी सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेने की क्षमता थी। वो मानते थे कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों का विश्वास जीत सके और सही समय पर सही निर्णय ले सके।
3: दिलचस्प बात यह है कि वो अपने बेबाक अंदाज और विनोद प्रिय स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। उनकी नेतृत्व शैली ने उन्हें केवल एक सैन्य अधिकारी ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बना दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की विरासत हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल पद या अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी नाम है।
0: तो आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना केवल एक महान सैनिक को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उस नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा को भी याद करना है जिसने भारतीय सेना और देश के इतिहास को एक नई दिशा दी। तो साथियों, कुछ खास है आज में बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नग्ने
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज।
1: कुछ खास है आज।
3: और दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की ओर। हमारा नंबर है 0595-23-24-326। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में पहले श्रोता हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो फ्रेंड सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, हमारी किससे बात हो रही है?
4: जी पम्मी प्रकाश से सर।
3: जी पम्मी जी, कैसे हैं आप?
4: हम ठीक है, आप बताइए। आकाशवाणी सब ठीक है?
3: जी हम भी सब भी बढ़िया हैं। और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: हम पक्का।
3: अच्छा जी,
4: आपसे कई बात हुई थी आपसे?
3: जी लास्ट टाइम भी आपकी। ओके
4: जी जी जी।
3: और
4: सर गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम पे।
3: जी जी गर्मी तो बहुत हो रही है। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
4: आंदोलन फिल्म का। आंदोलन
3: आंदोलन फिल्म का कौन सा गाना?
4: वो क्या मैं
5: कितने दिनों के बाद मिली हो।
3: जी और कोई और श्रोता साथी जिनको आप ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
4: जी जी जी जी जी गाने सानी हाजी का पार्ट जी है, नब्बो पान वाले हैं, जाहिद बट चा वाले, इस्लामा नहारी वाले हैं, फारूक भाई पीले त्रॉपे से, और आप हैं हमें।
3: जी ओके, चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हाँ जी, हेलो फ्रेंड।
0: हेलो, कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं आज हमारे साथ?
1: जिला अमरोहा, नई बस्ती, फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं। आपका उयुवाणी का प्रोग्राम सुनना है तो अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत खुशी होती है आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं।
1: और बाकी दिन भर के जो प्रोग्राम होते हैं आकाशवाणी के, सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात तक 11 बजे तक प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे ही होते हैं, सब बढ़िया होते हैं प्रोग्राम।
0: आपका प्यार है, आपके प्यार से प्रोग्राम जा रहे हैं। ऐसे ही आकाशवाणी रामपुर को अपना प्यार देते रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए। तो
1: हाँ, बहुत
0: बताइए
1: टाइम हो गया सुनते हुए। आकाशवाणी को तो अच्छा लगता है सुनना।
0: जी। बिल्कुल, और हमें बहुत अच्छा लगता है आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है जंगल लव। गाने के बोल हैं, कोयलिया गाती है, सरदारसी आती है, ये गाने के बोल हैं शुरू के।
0: जी,
1: तो कुछ नाम थे मैम, जैसे
0: किसको सुनवाना चाहते हैं आप ये गीत?
1: मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, शिफान सिद्दीकी, अलीसा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुतेज चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, नूर हुसैन से भाई, इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, बेलापुर मुरादाबाद से, मुकेश कसबिया, राशिद अंसारी है, पाव बड़े मुजाहिर अंसारी है, और थाना टीम मोहल्ले से इरफान खान साहब है।
0: जी, पेश है आपका गीत, सुनिए।
1: धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी। गफ्फार जी, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए आकाशवाणी परिवार को, स्वामी परिवार के और आपके परिवार के क्या हाल है
0: जी, आकाशवाणी परिवार और हमारे परिवार में भी सब अच्छे हैं।
1: जी?
0: जी और बताइए, आपकी जिंदगी में सब कैसा चल रहा है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम सुन रहा हूँ
0: जी, आपका प्यार है जिस वजह से हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम है राम लखन
0: जी, और गाना
1: के बोल में मुझे तुमसे हैं कितने गिरे, कुछ सुनने वालों के नाम है
0: जी बताइए।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, शाहिदा परवीन है, इरफान खान, अवामुद्दीन, इकराम अली प्रेमी, मसूद हुसैन, शबनम अब्बासी, चांदपुर अंसारी, हबीब अहमद दिली थी, गुलफ्चा, अनीसुर रहमान, आकाश रस्तोगी, पक्के बात से पम्मी, यही सब सुनना चाहेंगे
0: जी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड
1: जी नमस्ते जी,
0: जी, नमस्ते। कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं आज हमारे साथ?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछौड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताइए और क्या चल रहा
1: जी
0: है आजकल
1: मोबाइल एप
0: जिंदगी
1: पे
0: में?
1: कार्यक्रम सुनता हूँ आपके, मैं
0: जी
1: मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं आपके।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाशवाणी रामपुर को इतना प्यार देने के लिए और अपना कीमती समय हमें देके हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए।
1: जी उसमें मोबाइल ऐप पे हमें स्पष्ट प्रसारण मिलता है और हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: जी
0: और
1: और अभी
0: बताइए।
1: हमारे यहाँ पे हल रुक रुक के बारिश हो रही है।
0: जी बारिश हो रही है आपके यहाँ? यहाँ तो खूब गर्मी हो रही है।
1: जी हाँ बारिश हो रही है, किसानों में काफी गुस्सा है। अभी सोयाबीन की फसल की तैयारी कर रहे हैं सभी लगाने के लिए।
0: बढ़िया बढ़िया। तो कैसी रहेगी इस बार फसल, क्या सोचा आपकी?
1: जी बिल्कुल अच्छी रहेगी, और जब बरसात का पानी पूरी जगह भरा जाएगा, तालाब नदियाँ कुएं ट्यूबवेल सब में पानी आ जाएगा ना, तो
0: जी बिल्कुल, आपकी
1: फिर
0: मेहनत खूब रंग लाएगी।
1: हाँ जी, और फिर बाद में गेहूँ लहसुन की फसल भी लगाई जाती है यहाँ पर हमारे यहाँ पे। जी
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है गंगा यमुना सरस्वती,
0: जी
1: और गाने के बोले साजन मेरा उस पार में।
0: ठीक है, आपकी फिर पसंद का ये गीत सुनवाते हैं आपको। किन को सुनवाना चाहेंगे आप ये गीत?
1: जी हमारे दोस्त हैं भगवान सिंह परमार, आशुतोष अभिनव संगीता जी, लोकेंद्र आशुतोष, और रमेश टेलर हैं भोपाल से, और सुनील जी भी भोपाल से हैं। ये सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। एक और नए दोस्त हैं हमारे रामपुर से ही, ओमकार जी और मिंटू तिवारी। थैंक
0: जी पेश है आपकी पसंद का ये गीत, आइए सुनते हैं।
1: यू सो मच।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हमारी किस श्रोता साथी से बात हो रही है?
1: मैं राकेश बोल रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है। इस समय जो है बारिश की संभावना हो रही है और आसमानी थोड़ी थोड़ी बिजली कड़क रही है, तो हो सकता है कि बारिश आ सकती है।
0: जी शिमला में बारिश तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए, आपकी जिंदगी में सब कैसा चल रहा है?
1: बस हाँ, मेरी जिंदगी में तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है।
0: अच्छा जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है दिल का पागल है, तो गाने की बोले बोल सूरत।
0: जी, और कोई श्रोता साथी जिन्हें आप ये गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: श्रोता साथी सिर्फ है, रेडियो मित्र है मेरे, पूरण वर्मा है, भगवान सिंह परमार, अविनाश तेली और मांगी लाल चंदेल और रमेश प्रजापति, तमाम सुनने वाले श्रोता जिनका भी नाम सुन गया सभी के लिए गाना रेडी कीजिएगा।
0: जी ओके, चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड।
1: हेलो
0: हाँ जी, आज हमारे साथ कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं?
1: दीदी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ। दीदी
0: जी, सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: जी, हम तो बढ़िया। दीदी आप बताएं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आकाशवाणी रामपुर में सब बहुत अच्छे हैं। तो सतीश जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, बताइए।
1: दीदी मुझे आप सुनो दीजिए। दीदी फिल्म का नाम है दिलवाले और गीत के बोल रहेंगे। दीदी जीता था जिसके लिए
0: किसको,
1: मरता था।
0: ठीक है, किनको सुनवाना चाहेंगे आप ये गीत?
1: दीदी मैं सबसे पहले डेडिकेट आपको कर रहा हूँ
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आकाशवाणी रामपुर को इतना प्यार देने के लिए।
1: और हमारे मित्र हैं दीदी, गुड़वन कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं और सत्येंद्र चंचोलिया जी हैं। दीदी साथ में इन सभी दोस्तों का सुनना दीदी मुझे यह गीत।
0: बिल्कुल, तो पेश है आपकी फरमाइश का ये गीत, सुनिए।
1: जी थैंक यू दीदी।
0: वेलकम।

0: और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि अगली बार भी इसी उत्साह के साथ आप हम सब हमारे साथ जुड़ेंगे और कॉल पे अपने विचार साझा करेंगे। तो चलिए जानते हैं हमारे आज के सवाल का सही जवाब।
1: तो साथियों, आज का हमारा सवाल था, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, और इसका सही जवाब है इंडियन एलिफेंट यानी कि हाथी। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी
0: सुदर्शन शाह, रामचंद माखीजा, नरेन नेतम, दिनेश वर्मा, अजीत कसाना, प्रवीण चौहान, मोहम्मद रफीक पनवार।

0: कमल सिंह, गजानन येले, मुजफ्फर अली खान, विनोद मुनात, राष्ट्रपाल गजबीय, जगदीश धाकड़, फागुराम यादव, सोहन जोशी, राजू मिगलानी, लाल बाबू दीवाना, रवि रस्तोगी, सत्येंद्र चंचोलिया पंजौनिया, मोहम्मद जाहिद अली, भुवन प्रकाश, शेख मूसा, आफ्ताब अंसारी, सुभाष गोडारा, मिसबा शमसी, वलीउल्ला अंसारी, इरशाद अहमद, सुरेश खुराना, उत्तम कुमार भगत, तुलसी मस्कीन, संजय ढींगिया, रवि कुमार राहुल, पुंजाजी नवकार, डोनट पाबो, राजवीर सिंह यादव, शाहरून नूर अंसारी, हीरामणि वर्मा, बी एल धाकड़, चौधरी राजवीर सिंह, भाई रफत साहब, अशोक सिंह, गंगा सिंह रावत, विजय सिंह, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद आमिर अंसारी, रियासत हुसैन सिद्दीकी, बीपी गौतम, धीरज भाई रबारी, फरियाद हुसैन अंसारी, मुकेश कश्यप, भगवत चौबे लाडला जी, भाई रफत साहब, अनोखे लाल, मोहम्मद सैयद अब्बासी। तो दोस्तों, हमारे आज के सवाल का सही जवाब दिया था आप सभी ने।
1: साथियों, अब दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त हमारे पते के साथ। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है के द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। हमारा ईमेल एड्रेस है patmila@rampur.gmail.com।
0: आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9410087876। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9410087876। अब दीजिए स्वास्तिक
1: और नव्या को
0: अपनी अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम पेश कर रहे थे स्वास्तिक मिश्रा और नव्या अग्रवाल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के

0: पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा

पान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राज

0: ईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

24 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया, रंग गेहुआ, कद करीब 5 फुट, पैरों में चप्पल पहने हैं। यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो इन नंबर्स पर सूचना देने की कृपा करें। जसवंत सिंह, उपनिरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9058865472। राजेश कुमार पुत्र हरी सिंह, मोबाइल नंबर 7814819730। संजय कुमार थानाध्यक्ष थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9454404058।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री मेहर उम्र करीब 22 वर्ष है, जो जनपद संभल से लापता हैं। इनका हुलिया आँख नाक कान कद औसत, रंग सांवला, उम्र करीब 22 वर्ष है, काला बुरखा, सफ़ेद स्टॉल, लंबाई करीब 5 फिट और पैरों में चप्पल पहने हैं। यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो इन नंबर्स पर सूचना देने की कृपा करें। 7839857096। दूसरा नंबर 9458767396। उपनिरीक्षक श्री विनोद कुमार, थाना रायसत्ती, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9458767396। थाना अध्यक्ष, थाना रायसत्ती, जनपद संभल, मोबाइल नंबर 7839857096। सूचना समाप्त हुई।

0: आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: राष्ट्र राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ मातृभाषा मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आतिफ असलम की आवाज़ में बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत अपने दोस्त रिजवान के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत तुलसी कुमार और आतिफ असलम की आवाज में सत्यमेव जयते फिल्म से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत अपने दोस्त रिजवान के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत तुलसी कुमार और आतिफ असलम की आवाज में सत्यमेव जयते फिल्म से।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनन बारे हमारे सभी भैया बहनों को आपके भैया पंकज
1: और अनिल भैया की राम राम।
0: और अनिल भैया सुनाबो, क्या हाल चाल है?
1: हम तो अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं वो भी अच्छी तरह से होंगे।
0: जी
1: लेकिन देखो जाता है हमारे बहुत सारे किसान भैया ने कई एक फसलें अपने खेतों में लगा रखी हैं।
0: जी हाँ भैया,
1: और जा समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही है,
0: बहुत गर्मी पड़ रही है भैया,
1: ज़रूरत जा है कि उनकी जो भी फसलें हैं उनमें देख रेख अच्छे से करें।
0: जी भैया,
1: कुछ सब्जी वाली फसलें भी हमारे किसान भैया ने लगा रखी हैं।
0: जी
1: अगर हम बात करें बैंगन की फसल की,
0: जी भैया,
1: तो बैंगन की फसल में देखो जाता है कि कई तरह के कीट और लग जाते हैं।
0: जी भैया,
1: और कीटन से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भैया उनको किस तरह से उनके उपाय अपनावें और कौन सी दवा डालें, कब डालें, ये बहुत सी बात है
0: जी
1: ज़रूरी
0: भैया, क्यों भैया कोई भी फसल सही हमारी जब कीट लग जाता है तो बाको स्वाभाविक बात है कि
1: है।
0: बाको उत्पादन कम होता है, और जब उत्पादन कम होगा तो हमारे किसान साथियों को बाको लाभ कम मिले।
1: बिल्कुल। और कीट नियंत्रण करण के कई तरीका हैं,
0: जी भैया, कई तरीका
1: उनमें से
0: हमें,
1: हमारे बहुत सारे किसान भैया जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, रासायनिक नियंत्रण कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: भैया, अगर हम भैया ना जैविक और यांत्रिक विधियों में अगर बात करें तो जो हमारा बैगन है

0: जिन फलों और टहनियों में अगर छेद दिखाई दें तो उन्हें तोड़कर खेत से दूर जो है किसी गड्ढा में दबा दें।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से अगर कोई कीट को रोकने हैं
0: जी भैया,
1: तो बाकेले भैया देखो फेरोमोन ट्रैप आता है
0: जी,
1: उनको लगा दें। 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप जो है 1 एकड़ में लगाए जा सकते हैं।
0: जी
1: उनसे क्या होता है कि जो नर कीट पतंगा होते हैं
0: जी,
1: वे आकर्षित होते हैं, और वो आकर्षित होने के बाद वो जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वे उसके द्वारा उनको नियंत्रण करो जा सकता है।
0: जी भैया,
1: और जैविक दवाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि इल्लियों जो होती हैं ना
0: जी
1: वो फलों को तनों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं,
0: बिल्कुल भैया,
1: उनकी रोकथाम के लिए बैसिलस एक दवा आती है
0: जी
1: बीटी के नाम से जिसे जानते हैं,
0: जी
1: उसकी 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर घोल बनाकर अपने जो खेत है उसमें स्प्रे करेंगे
0: जी
1: तो जाहिर सी बात है कीट नियंत्रण हो जाए।
0: जी भैया,
1: और अगर रासायनिक विधि की बात करें तो उसमें भी हमारे किसान भैया कई एक जो दवाएं हैं उनको ले सकते हैं। तना और फल छेदक के लिए क्लोरो ट्रेना फिरोल, और इसके अलावा हमारे किसान भैया फ्लू बेडिया माइंड क्यों छिड़काव कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, और प्रति एकड़ जो है ना वो एक मात्रा लगभग 4 से 6 ग्राम या 30 से 40 मिलीग्राम वह उपयोग कर सकते हैं भैया, वह
1: बिल्कुल।
0: छिड़काव कर सकते हैं।
1: और चूसने वाले कीट के लिए जैसे सफ़ेद मक्खी है
0: जी भैया, भैया जी चीज़ बहुत खतरनाक है जैसे माहू है, सफ़ेद मक्खी है, तो जाके ले इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 मिली मात्रा ना ले लें और प्रति लीटर पानी की दर से बाको इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारी सावधानियां, जैसे अगर अन्य सावधानियों की बात करें तो फल तोड़ने के 10-15 दिन पहले रसायनों को छिड़काव बिल्कुल ना करें।
0: और एक चीज़ और है भैया कि हम कोई भी फसल करें तो फसल चक्र जरूर अपनाएं, तो
1: बिल्कुल
0: जो ना हमारे किसान साथी हैं तो भी एक ही खेत में बार बार बैंगन की फसल ले रहे हैं तो जा से बचाए हुए हैं ना।
1: बिल्कुल।
0: हाँ।
1: और इसके अलावा खेत की गहरी जुताई करके धूप से लगने वाले जो मिट्टी में छिपे हुए जो प्यूपा है ना
0: जी
1: उनको नष्ट कर लें।
0: हाँ भैया,
1: गहरी जुताई करके जो हमारे किसान भैया है वो अपने फसलन में आने वाले कीटन को रोक सकते हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के लिए देखो जाता है कि बागवानी भी करते हैं
0: जी भैया,
1: और बागवानी में जरूरी जा है कि उनकी देखभाल कैसे करी जाए, उनमें कौन कौन से ऐसे काम करे जाएँ जो कि बागों से ज़्यादा लाभ मिले।
0: जब भैया आपने बाग को नाम लो ना भैया, तो देखो इस समय आम को सीजन चल ही रहा है और आम हम सब लोग जानते हैं स्वादिष्ट फल है, लेकिन भैया आम के सीजन में तो हम भाई खा बहुत फल खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट फल लगते हैं, तो हम इस समय इसी से संबंधित आम के बाग से संबंधित अपने किसान साथियों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जाको विषय है आम के बागों की देखभाल और सामूहिक कार्य। इस विषय पर जो जानकारी दे रहे हैं वो दे रहे हैं डॉक्टर मुनीश कुमार और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सर विक्रांत चौधरी जी। तो साथियों जो सुन लेते हैं भेंट वार्ता।
2: किसान साथियों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं वो है आम के बाग, उनकी देखभाल और क्या कुछ साबिक कार्य आम के बागों में किए जाते हैं जिससे कि हम किसान भाई अच्छी से अच्छी फसल आम की ले सकें। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच एक विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी। डॉक्टर मनीष कीवी के बधाइयों से संबंध रखते हैं और आज हमारे बीच में एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आम के बाग में, क्योंकि इन दिनों अब फसल लगभग तैयार है, मार्केट में कहीं कहीं आ भी गई है, क्या कुछ किसान भाई इन दिनों ध्यान रखें, हम यहीं से शुरू करते हैं कि अच्छी से अच्छी फसल वो ले सके।
3: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आम का इस समय जो है जो मैच्योरिटी के कगार पे है और कुछ जो अर्ली वेरायटी जो अगेती प्रजातियां हैं वो आपको मार्केट में दिख भी रही होंगी, और जो है लेट सोन वेरायटीज हैं उसमें जो हमें कार्य करना है कि कुछ किसानों कि ये भी शिकायतें हैं कि साहब हमारे बाग में क्रैकिंग, फ्रूट क्रैपिंग जो है फलों में जो है चिटक रहे हैं उनके फल, तो उसके लिए जो किसान बंधु हैं वो बोरॉन बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं
2: जी।
3: बोरॉन का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, इससे आपका जो क्रैकिंग या स्प्लिटिंग जो समस्या है, जो चिटक जा रहा फल, उसकी समस्या से निदान मिलेगा।
2: जी डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि बहुत से किसान भाई अब जागरूक हो गए हैं, वो बैग भी अब इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रूट्स के लिए, ताकि कम से कम डैमेज हो, अच्छी क्वालिटी का रहे तो उसके अच्छे दाम भी मार्केट में मिलेंगे, स्टोरेज का भी ध्यान रखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कैसे क्या कुछ सहायता किसान भाइयों की हो सकती है, क्या कोई सब्सिडी भी ऐसी है कि जो फ्रूट बैग है उसके लिए केवीकेज के माध्यम से या यूनिवर्सिटीज के माध्यम से या केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना विशेष रूप से हॉर्टिकल्चर को लेकर, आम की बागवानी को लेकर है?
3: प्रदेश सरकार के द्वारा जो फल पट्टी योजना के अंतर्गत जो है, जो उद्यान विभाग के द्वारा जो है पेपर बैग्स जो है मुफ्त जो है किसानों को दी जाती है
2: जी।
3: और बदायूं क्षेत्र में इस योजना का किसान काफी हद तक लाभ भी उठा रहे हैं। जो पेपर बैग्स हैं जो उद्यान विभाग के द्वारा उनको जो है निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं, और उससे सबसे अच्छी क्वालिटी के पेपर बैग्स हैं, उससे जो फ्रूट फ्लाई जो कीट होता है जो डंक मार देती है जो फलों में, उससे फलों की गुणवत्ता भी जो है घटती है, और हमारे जो ब्लैकिश कलर काला कलर का जो है एक पाउडर्ड फॉर्म में जो किसान बंधु देखते होंगे कि आमों पे लग जाता है, जिससे कि फलों की गुणवत्ता भी कम होती है और उसकी मार्केटेबल जो क्वालिटी होती है वो बाजार में जो बेचने के लिए आप जाएंगे तो आप जो है उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। तो इन पेपर बैग्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि फ्रूट्स हमारे जो है वो फल उच्च गुणवत्तापूर्ण हो।
2: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आम के बागों में वर्ष भर कार्य होते हैं, किसान भाई हमारे खेती बागवानी करने वाले भाई लगे रहते हैं, उनमें छटाई का काम हो, प्रूनिंग का हो, या अननेसेसरी अगर पेड़ बढ़ रहा है अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको लेकर भी कार्य होते हैं। तो क्या कुछ ऐसे मुख्य कार्य हैं कोई भी बागवानी से जुड़ा ध्यान में रखे और समय रहते उनको करता रहे?
3: देखिए, जो ट्रेनिंग एवं प्रूनिंग, जैसे कटाई एवं छटाई, ये एक बहुत ही मुख्य जो है बाग में करने की जरूरत है। जैसे जो जिन ब्रांचेस में, जिन तनों में हमारी फ्रूटिंग नहीं हो रही है, या ऐसे तने जिसमें बीमारियां लगी हैं या किसी प्रकार का रीकीट लगा हुआ है, उसमें हम ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग एवं प्रूनिंग का इसका लाभ ये होता है कि जिनमें आवश्यकता नहीं है, जिनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, उसकी कटाई और छटाई करने से हमारा जो आपका न्यूट्रिएंट अपटेक है, जो हमारा पोषक तत्व जिन पौधों में जा रहा है, वो जो है काफी हद तक हम बचा सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करना अति आवश्यक कार्य है।
2: जी डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि जिस प्रकार से अन्य फसलों में हम कीट प्रबंधन करते हैं, आम के बागों में भी विशेष रूप से कीट प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाता है कि अगर हम किसान भाई कोई भी ऐसी लापरवाही करें तो फसलों पर एक भारी नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान कैसे किसान भाई रखें, क्या कुछ उपाय करें कि समय रहते पहले तो कीट लगे ही ना, और यदि कीट की चपेट में हमारे पेड़ आ भी गए हैं तो कम से कम नुकसान के साथ उनको ठीक किया जा सके, उपचारित किया जा सके?
3: इसके लिए जो है किसान बंधु जो है फेरोमोन ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप से हम जो है काफी हद तक जो है कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे उसमें फेरोमोन ट्रैप में जो मेल इंसेक्ट होता है वो फीमेल इंसेक्ट का ल्योर लगा होता है फेरोमोन ट्रैप में, जिससे वो जो है अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होने के उपरांत जो है उसमें वो ट्रैप हो जाता है। तो ये तो हमारा एक बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, जैविक जो है कंट्रोल हो गया, जिसके द्वारा हम जो है कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसी फल में कीट का प्रकोप है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है कीटनाशक है, जैसे इमिडा क्लोरोपिड हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, इन रसायनों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में विशेषकर आम की खेती या आम की बागवानी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर के हर एक कोने में होती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, और कॉमन ब्रीडिंग के चलते अब अच्छे से अच्छे पेड़ हमें मिले, फलदार पेड़ हमें मिले, उनके लिए भी कार्य हो रहा है। तो जिस क्षेत्र में हम इस समय कार्य कर रहे हैं, ये रोहिलखंड का क्षेत्र या तराई क्षेत्र अगर हम इसको कहें, तो यहाँ कौन सी ब्रीड आपको ऐसी लगती है कि जो ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा लाभकारी है?
3: यहाँ पर जो है बेसिकली जो किसान बंधु दशहरी, आम्रपाली, लंगड़ा, चौसा, इसका खेती ज्यादा करते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि जो आज की मांग क्या है कि मैंगो जो आम जो फसल है वो जितनी जल्दी मार्केट में अर्ली आए, हर किसी को कंज्यूमर जो है चाहता है कि वो जो है अर्ली प्रजाति, जो अगेती प्रजाति है उनका जो है प्रयोग। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से भी आह्वान करूंगा कि वो दशहरी को प्रेफर करें, फिर उसके बाद आप चौसा को भी कर सकते हैं, लेकिन दशहरी को ज्यादा करें, क्योंकि दशहरी में एक तो बीमारियां भी लगती हैं और अर्ली वैरायटी होने के कारण ज्यादा मार्केट प्रिफर करता है।
2: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि भारत न केवल एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आम करते हैं, और ये देखने में आता है कि दुनिया भर में भारत के आमों को पसंद भी किया जाता है।
3: जी।
2: पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ देशों ने भारत के आमों को लेने से एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी को वापस कर दिया, क्या कारण रहे और किसान भाई क्या ऐसा करें कि जो मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है किसी भी प्रोडक्ट का, भले ही वो फ्रूट हो, उसको ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर्स का भी और अन्य पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कम से कम करें ताकि उनकी फसल भी बची रहे, नुकसान भी ना हो और अच्छे से अच्छा दाम, अच्छे से अच्छी वैल्यू उनकी आम की फसल को मिले।
3: देखिए, आम में बेसिकली जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, हर किसी फसल में एक रिकमेंडेड डोज

0: फर्टिलाइजर का,
1: जी
0: और उसी तरह से रिकमेंडेड डोज पेस्टिसाइड का होता है, जो किसान बंधु कभी भी किसी भी कीटनाशक का या भी किसी भी उर्वरक का अगर प्रयोग करते हैं तो उस रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ना डालें।
1: जी
0: इसके लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र, जो भी उनके जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके यहाँ कृषि विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह लें और उस रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा न डालें। इससे क्या नुकसान होता है कि जब क्रॉप में रेजिडुअल इफेक्ट आता है, रेजिडुअल
1: जी
0: इफेक्ट मीन्स उसका अवशेष, अगर आपकी फ्रूट्स में उसका अवशेष ज़्यादा रहेगा तो वो कंसाइनमेंट जो भी आप विदेश में भेजेंगे वो एक्सपोर्ट होने से वंचित रह जाएगा और वो कंसाइनमेंट वापस आ जाएगा,
1: जी
0: और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है ये बहुत महंगा होता है। तो किसान बंधु अपने उसको ग्रेडेड फ्रूट्स को वो जो है प्रॉपरली भेजें, और उसमें ये ध्यान रखें कि जो रिकमेंडेड डोज उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल ना करें, अन्यथा उनका जो एक्सपोर्ट के लिए वो भेज रहे हैं वो कंसाइनमेंट भी वापस हो जाएगा
1: जी
0: और उसका नुकसान भी उनको होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सभी प्रकार की फसलों में मिट्टी का रोल बहुत अहम होता है। क्या बागवानी में भी, विशेष रूप से आम के बागों में भी, मिट्टी का उतना ही अहम रोल है, और किस प्रकार से हम मिट्टी का स्वास्थ्य रखें, विशेष रूप से आम के बागों के लिए, कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन हमें मिले?
0: मिट्टी से ही सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो बागवानी में मिट्टी का अहम रोल है। और बागवानी में जो आम के बाग में विशेष तौर से फार्म यार्ड मैन्योर, सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर थाले बना लें। और एक प्राय समस्या आती है आम के बागों में जो दीमक की, तो उसके लिए जो है बेबेरिया बेसियाना 50 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में बेबेरिया बेसियाना 2 किलो
1: जी
0: प्रति पेड़ जो है उसमें मिलाकर थाले बना लें, और थाले बनाने के उपरांत ही उसको लगाएं। और हम ये कहेंगे कि मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, कैल्शियम, सल्फर, इसका प्रयोग जो है किसान भाई बहुत ना के बराबर करते हैं।
1: जी
0: तो मैं उनसे ये आह्वान करूंगा कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया, DAP, पोटास तो डालते ही हैं, प्लस उसके साथ जो है सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसका भी स्प्रे करें, ताकि जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसे जो है पोषक तत्व जिनके कमी से वो बीमारियां होती हैं,
1: जी
0: उनसे हम अपने आम के बाग या किसी भी बाग को बचा सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, हम कई बार देखते हैं कि असमय या ऐसे समय जिस समय पेड़ को पूरा हरा भरा होना चाहिए, उस समय पेड़ की पत्तियां सूखने लगती हैं, या कोई एक विशेष डाल पर ऐसा प्रभाव होता है कि वो सूखने लगती है और उस डाल पर कोई फल नहीं आता, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कोई रोग है या कोई अन्य ऐसी लापरवाही जो हमारे बागवानी के साथ ही कर देते हैं गलती से?
0: हमें पहले ये ध्यान देना है कि उस डाल में अगर नहीं आ रहा है तो ये देखना है कि उस पेड़ के एक ही डाल में नहीं आ रहा है या उस पेड़ में ही, क्योंकि
1: जी
0: आम में अल्टरनेट बियरिंग होता है, एक बार
1: जी
0: फलत आती है तो दूसरे सीजन में आम जो है अपने आप को सुसुप्तावस्था में रखता है, अपने आप को
1: जी
0: तैयार करता है दूसरी फलत के लिए। तो हमें ये देखना है कि क्या वो डाल किसी इंसेक्ट के द्वारा, किसी कीट के द्वारा प्रभावित तो नहीं है, या उस डाल में किसी तरह का कोई रोग तो नहीं लगा है। इसको देखने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद, आप जो है उसमें जो भी कीटनाशक है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी पोषक तत्व की कमी से अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो है आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। वो देखने के बाद ये संभावित होता है कि किसी फफूंद के द्वारा वो इन्फेक्शन है या किसी कीट के द्वारा। अगर फफूंद के द्वारा है तो आप मैनकोजेब कार्बेंडाजिन का स्प्रे कर सकते हैं, अगर किसी कीटनाशक का है तो आप इसके लिए साइपरमेथ्रिन या इमिडा का स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आम की फसल एक ऐसी फसल है जो वर्षों वर्षों तक फल देने का कार्य करती है। कब किसान भाई ये समझे, या कोई भी एक पेड़ की कितनी आयु लगभग हो कि इसके बाद इसमें शायद फ्रूटिंग होना उतना संभव नहीं है, या उतने बेहतर परिणाम हमें नहीं मिलेंगे जितने कि नए पौध को लेकर हमें मिल सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो जो भी फसल है उसमें अगर आप रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जो रिकमेंडेड डोज है वो दे रहे हैं,
1: जी
0: अगर फिर भी फ्रूटिंग नहीं हो रही तो उसके लिए जो पुराने पेड़ हैं उसका वृद्धोपार्जन होता है,
1: जी
0: उसका रिजुबनेशन होता है, उसमें प्रॉपरली कटाई छटाई के बाद जो है हम एक पौधे को नया शेप दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी हुई है, इस पे सारी कुछ निर्भर करता है। और हम पुराने बागों का भी जोड़ाधार अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जो हमारे पास आते हैं जिनके बाग पुराने हो चुके हैं और वो उन बागों में फ्रूटिंग नहीं हो पा रही, तो उनके पुराने बागों का भी हमने जोड़ाधार किया
1: जी
0: और उसमें प्रॉपरली जो है जो भी कल्चरल प्रैक्टिस वैज्ञानिक विधि के द्वारा उसको रिजुविनेट करके उसमें वृद्धोपार्जन किया।
1: जी डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि जब पेड़ कम लंबाई के रहते हैं या किसानों भाइयों के पास थोड़ी जगह ज्यादा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि सह फसली कुछ हो जाए, कोई घास आदि के लिए कुछ यूज में ले आता है। कई बार बहुत से किसान भाई गेहूं की फसल भी उसमें उपयोग में लाते हैं या अन्य कुछ ऐसी चीजें जिनसे थोड़ा बहुत लाभ मिल सके और सही यूटिलाइजेशन उस खाली लैंड का हो सके। इससे क्या कोई नुकसान पेड़ों को भी होता है, फसल को भी होता है, आम की फसल को विशेष रूप से?
0: बेसिकली देखिए, आम की फसल में हम जो है किसानों को रिकमेंड करेंगे कि हल्दी एक ऐसी फसल है जो कि जो है छाया को, शेड लविंग छाया में भी हो जाती है। तो आम के बीच में जो स्पेस है उसमें हल्दी की खेती करें, क्योंकि एक्सपोजर सनलाइट का जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ज्यादा हल्दी को आवश्यक नहीं होती है। तो जो हम हल्दी का जो है खेती आम के पेड़ों के बीच बीच में कर सकते हैं, और प्रॉपरली हम अगर जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग जो कटाई और छटाई का जो है अगर हम आम के बागों में करते हैं तो उसमें हम हल्दी को सह फसली ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी एक फसल के साथ दूसरी फसल भी होगी और एडिशनल इनकम जो है किसान भाइयों को मिलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा विषय जो ले आता है वो ये आता है कि जब इतने बड़े स्तर पर फसल होती है तो उसको संजो कर रखने का, संभाल कर रखने का जब तक कि वो मार्केट में ना आ जाए, मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड स्टोरेज की, तो इसकी क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ ऐसी कोई योजना राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की है कि खासकर बागवानी के किसान अपने प्रोडक्ट को जब तक कि उनके मनचाही वैल्यू ना मिल जाए उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकें और वेट कर सकें कि सही समय पर अपनी फसल को मार्केट में लाया जा सके?
0: उद्यान विभाग के द्वारा कोल्ड स्टोरेजेस हैं, उसमें भी हम अपने आम को संरक्षित कर सकते हैं। और किसान भाई, आज की डेट में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, हम उस प्रोडक्ट के जो है जो आम है उससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे मैंगो से मार्मलेड बना दें, मैंगो केचप बना दें, उससे निकाल लें, तो इसको हम पोस्ट हार्वेस्ट के द्वारा कुछ लंबे समय तक संजो के रख सकते हैं और उसका भंडारण कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो नए किसान हैं जो बागवानी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और विशेष रूप से क्योंकि बागवानी काफी फ्रूटफुल एक बिजनेस हम कहेंगे खेती से बढ़कर है, कैसे वो जुड़ें, कैसे वो नई शुरुआत करें, कैसे खेत को तैयार करें ताकि समय रहते अच्छी ब्रीड के आम लगा सकें और अच्छा लाभ ले सकें?
0: अभी आने वाला समय जो आम के, अमरूद के, आंवला के ये सारे जो है पौधे हम तैयार कर रहे हैं, तो किसान बंधु आम की नर्सरीज जैसे आपका CISH रहमान खेड़ा लखनऊ से भी प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: और अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में या उद्यान विभाग में वहां पर संपर्क करके उच्च गुणवत्ता वाली जो फल वृक्ष हैं वहां पर उपलब्ध हैं और वहां से उनका लाभ उठा सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि समय समय पर नई नई तकनीक, नए नए प्रबंधन आते हैं, शोध के बाद किसानों तक पहुंचते हैं, क्या कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है विशेष रूप से ऐसे किसान साथियों के लिए जो केवल बागवानी पर निर्भर है? नई नई तकनीकों को उनसे कैसे रूबरू कराया जाता है, कैसे वो समझें क्या कुछ नया आ रहा है जिससे वो अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं?
0: देखिए, आपको बताऊं कि जो हमारे जिले के जो कृषि विज्ञान केंद्र है इनका बहुत ही अहम भूमिका होता है। उन सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि वो अपने अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाएं और वहां पर हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में चार प्रकार की जो है प्रशिक्षण होती है, एक ऑन कैंपस, एक ऑन ऑफ कैंपस, एक जो है रोजगार युवक प्रशिक्षण होता है, एक प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण होता है। तो उस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करें और उस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के बाद उसका लाभ उठाएं। हमारे यहाँ उद्यान की ट्रेनिंग होती है, हम पॉली हाउसेज में कैसे पौध तैयार करते हैं इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो जो भी किसान बंधु इच्छुक हैं वो जो है अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, इससे उनको बागवानी में और काफी हद तक मदद मिलेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, लगभग सभी विषय को हमने कवर किया। वर्ष भर आम की फसल में कार्य होते हैं तो क्या कुछ सामयिक कार्य हो, क्या कुछ समेकित प्रबंधन हो समय समय पर आप जरूर किसान भाइयों से साझा कीजिए अंत में?
0: जी देखिए, किसान बंधु जो है सबसे पहले तो जो भी फसल को चुनाव करें उसके बाद उसमें प्रॉपरली जो है हम मैन्योर्स को, फर्टिलाइजर्स को पहले तो कितना, जैसे अगर एक साल का पौधा है तो उसमें 100 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस, 200 ग्राम पोटास ये दें। और जो है उसका एज ब्रैकेट है, अगर 5 साल तक है तो उसको जो है दूना करते जाएं, और 5 साल से अधिक है तो फिर हम जो है सड़ी हुई गोबर की खाद भी मिलाएं, और जो है 10 किलो FYM मिलाने के बाद एक एक पेड़ पे फास्फोरस को मिलाएं, पोटास को मिलाएं और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करें। इससे हमारी जो है आम की फसल जो है उच्च गुणवत्ता वाली होगी और ज्यादा प्रोडक्शन भी मिलेगा हमें।
1: तो किसान साथियों, ये थे डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी जो कि KVK बदायूं से आज हमारे बीच में थे और आम के विषय को लेकर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कार्य इसमें हो, सामयिक कार्य क्या हों, क्या कुछ प्रबंधन हो सकता है जो अधिक से अधिक लाभ हमारे किसान भाई ले, इसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे किसान साथियों के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: और पंकज भैया देखो, अभी हमारे किसान भैया और बहन ने सुनी आम के बागों की देखभाल और सामयिक कार्य विषय पर जानकारी।
3: जी भैया,
2: हम उम्मीद करते हैं हमारे बहुत सारे किसान बहन के लिए जो आम के बाग इस समय लगाए हुए हैं
3: जी,
2: उनके लिए काम की होगी और उनके समझ भी आई होगी
3: जी।
2: जानकारी दे रहे

0: डॉक्टर मनीष कुमार और आपसे बातचीत कर जानकारी दिलवा रहे भैया विक्रांत चौधरी जी।
1: जी भैया,
0: हम उम्मीद करते हैं हमारे जो भी किसान भैया हैं जरूर लाभान्वित होंगे। और अब समय ही चलो मनोरंजन को, तो कौन सा लोकगीत सुनवा रहे हैं हमारे किसान भैया के लिए?
1: भैया हम सुनवा रहे हैं मारी ही गली में आयो सपेरा। तो साथियों जो सुनते हैं लोकगीत।

0: पंकज भैया, आपने लोकगीत तो बड़ो अच्छो सुनवाओ, मारी ही गली में आवेर सपेरा। और चित्राम जी की आवाज़ में हम उम्मीद करते हमारे सभी किसान भैया और बहन ने सुनो हुए ये लोकगीत, उम्मीद करते हैं अच्छो जरूर लगो।
1: और भैया साथियों, हम सब लोग तो जानते हैं कि हम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में किसी न किसी गांव में हमारे किसान भैया जाते हैं, तो आज ही हमारे भैया गए एक गांव में, और जो गांव को नाम है मानकपुर बंजरिया, जो ब्लॉक सैदनगर जनपद रामपुर में पड़ता है। और वहाँ हमारे अनिल भैया ने एक गौरव कुमार जो हमारे कृषक हैं उनसे बातचीत करी, और उनसे क्या बातचीत करी ये बातचीत हम आपको सुनवाते हैं।
0: आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम गौरव कुमार, मैं ग्राम मानकपुर बंजरिया ब्लॉक सैदनगर जिला रामपुर का निवासी हूँ।
0: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
2: मैं पेशे से किसान हूँ
0: अच्छा
2: और बाकी अपनी खेती बाड़ी से हटके थोड़ा और भी मेरा काम रहता है, जैसे
0: अच्छा
2: दुकान
0: अच्छा
2: वगैरह।
0: अच्छा हम आज आपके गांव में आए हुए हैं, सैदनगर ब्लॉक का ये गांव है मानकपुर बंजरिया, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी होगी?
2: मेरी उम्र 37 साल की लमसम है।
0: अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है?
2: मैं ग्रेजुएट हूँ।
0: अच्छा, तब तो
2: जी
0: अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं,
2: जी जी
0: और खेती बाड़ी को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे, तकनीकी के साथ
2: जी जी
0: खेती
2: जी
0: करते
2: जी
0: होंगे।
2: मैं एग्रीकल्चर से ना होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि मैं एक कृषि प्रधान देश
0: जी
2: हिंदुस्तान का निवासी हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बड़ा अच्छा ही नज़रिया है आपका, खेती के प्रति आप इतने सजग हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भाई आपको सुनेंगे आकाशवाणी के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि आपके विचारों पर ध्यान देंगे। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आप फसलों में क्या क्या हुआ?
2: फसलों में मैं मुख्यतः धान, गेहूँ
0: जी
2: और गन्ने की फसल करते हैं।
0: जी
2: गन्ना तो हमारे यहाँ पे होता नहीं है, अब
0: अच्छा
2: पहले होता था, पहले करते थे, अब नहीं। अब मुख्यतः धान, गेहूँ और मिर्च करते हैं
0: अच्छा
2: हम।
0: धान गेहूं और मिर्च की खेती
2: मिर्च
0: करते हैं।
2: जी जी
0: अब बात ये आती है कि बहुत सारे खाद है, उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक डालते हैं किसान भाई,
2: जी
0: और कीटनाशी भी डालते हैं,
2: जी
0: बीमारी के लिए भी कुछ ना कुछ दवाओं का प्रयोग करते हैं।
2: बिल्कुल
0: खादों का व्यवस्था किस तरह से हमारे किसान भाई बनाएं, किस तरह से डालें, किस तरह से हमारे किसान भाई करें?
2: ये जो सरकार ने एक नियम बनाया है, ये बहुत बढ़िया बनाया है फार्मर आईडी द्वारा।
0: बिल्कुल
2: उस पर एक के नियमित मात्रा में हमें उर्वरक देने की
0: जी
2: संतुष्टि करी गई है।
0: अच्छा
2: जैसे मान लीजिए सरकार का एक नियम है कि 2 एकड़ में 4 कट्टे मिलेंगे, यानी कि 1 एकड़ में एक सीजन में यानी 6 महीने में हमें
0: जी
2: 2 कट्टे यूरिया के मिलेंगे, 1 कट्टा एनपीके के मिलेगा। ये
0: बिल्कुल
2: सरकार का नियम है। तो हम
0: अच्छा
2: इसमें क्या करें, हम अपनी धान की फसल या गेहूं की फसल या हम मिर्च में बहुत अधिक मात्रा में यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तीन तीन खाद लोग लगा देते हैं,
0: जी
2: तो हम उसमें क्या करते हैं, हम साइड में चरी वगैरह भी करते हैं। तो उसमें पहली खाद है, जैसे धान है या गेहूं है, उसमें पहली खाद तो हम डालते हैं यूरिया दाने वाली 5 किलो बीघे की।
0: बिल्कुल
2: जब हम दूसरी यूरिया की तरफ पहुंचते हैं, जब दूसरा पानी लगाते हैं, जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की लमसम हो जाती है, जिससे हमारा खेत 40 से 50% क्षेत्र पर घेर ले, जिससे
0: जी
2: उसकी पांच पांच छह छह पत्ती हो जाए, उस अवस्था में हम नैनो उर्वरक पे, नैनो
0: अच्छा
2: यूरिया
0: जी
2: प्लस के नाम से, जो पहले नैनो यूरिया आता था, अब नैनो यूरिया प्लस आ रहा है।
0: अच्छा
2: उसमें 20% नाइट्रोजन है, उसमें क्लोरोफिल चार्जर,
0: अच्छा
2: साथ में स्टिकर भी दे रखा है जो
0: अच्छा
2: चिपकाने का भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए पहला हमने दाने वाला दे दिया, दूसरी बार में हम पानी लगाने के पश्चात जब खेत में प्रॉपर नमी होती है,
0: जी जी
2: टेम्परेचर को बड़ा ध्यान में रखते हैं हम, क्योंकि जब
0: अच्छा
2: 35 से नीचे टेम्परेचर होता है,
0: जी
2: जब ही इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा
2: उस टाइम पे पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं वो खिले हुए होते हैं,
0: अच्छा
2: और जब टेम्परेचर 35 से ऊपर पहुंचता है तो पौधे अपने स्टोमेटा बंद कर लेते हैं।
0: अच्छा
2: हाँ जी हाँ जी,
0: ये
2: और
0: नेचुरल है, ये
2: ये
0: प्राकृतिक
2: प्राकृतिक का नियम है, प्राकृतिक के नियम के अधीन
0: अच्छा
2: हम
0: अच्छा
2: सारी खेती करते हैं अपनी।
0: बिल्कुल
2: तो
0: बड़े
2: उस अवस्था
0: अच्छा
2: में हम क्या
0: निर्णय
2: करते हैं,
0: है
2: नैनो यूर्वरक का
0: जी
2: इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें यूरिया की अपेक्षा क्लोरोफिल की मात्रा कम देखने मिलती है, यानी कि हरापन
0: जी
2: कम होता है, मगर
0: जी
2: उत्पादन में हमारा कोई अंतर
0: सही
2: नहीं आता।
0: अच्छा, इससे ग्रोथ भी उतनी ही होती होगी, कल्ले ज्यादा होते होंगे उससे, उसी के
2: जितना
0: कार्यक्रम में
2: असर नैनो यूरिया दिखाती है
0: जी
2: उतना असर दाने वाली नहीं दिखाती है,
0: अच्छा
2: क्योंकि हम दाने वाली जो लगाते हैं उसका
0: जी
2: एक रीजन है साहब, मैं आपको
0: अच्छा
2: बताना चाहूंगा।
0: जी जी
2: उसका रीजन ये है, जब हम दाने वाली डालते हैं उसका जो कार्यकाल है 6 दिन से 8 दिन हाईएस्ट
0: अच्छा
2: अपना, उसने 46% जब हमने खेत में यूरिया दाने वाली डाली तो 46% हमारे पौधे को यूरिया
0: मिल
2: मिल
0: गया।
2: गई।
0: बिल्कुल
2: पौधे को जरूरत अगर 5% की भी थी या कम मात्रा में थी, फिर भी वो 46% पौधे को उपलब्ध कराई। उससे क्या, हमारे खेत की क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती, पौधा हमारा कच्चा हो जाता है।
0: बिल्कुल
2: इससे हमारे खेत में कीट पतंगे बहुत अधिक लगते हैं, फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं,
0: बीमारी ज्यादा लगती,
2: बीमारियां बहुत आती हैं, फंगस दिखना स्टार्ट होता है। जबकि नैनो यूरिया से क्या है, नैनो यूरिया की जो कड़ है उसके ऊपर एक पॉलीमर की परत चढ़ा रखी है इफ्को वालों ने।
0: अच्छा अच्छा।
2: हम जब नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं तो यूरिया की अपेक्षा, दाने वाली की अपेक्षा, इससे हरापन कम दिखता है, मगर पौधे को जितनी नाइट्रोजन की जरूरत है उतनी पौधे को धीरे धीरे मिलती रहती है। जैसे हमने स्प्रे किया अपनी फसल में तो पौधा जो स्टोमेटा द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एकत्र कर लेता है। जब पौधे को मान लीजिए कम कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी नाइट्रोजन की जितनी जितनी जरूरत होती रहती है उतने कड़ों की पॉलीमर की परत टूटती रहती है और 16 से 18 दिन तक ये लगातार नाइट्रोजन हमारे खेत को उपलब्ध कराती रहती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे कीट पतंगे भी हमारे खेत में कम आते हैं और यूरिया भी हमें वो 8 दिन मिली और इसने काम हमारा 16 दिन किया, तो उससे तो दुगना काम हो
0: गया, काम कर रही है। यही सोचने की बात है, बड़ी तकनीकी के साथ आप खेती करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई नैनो डीएपी के नाम से भी अब आ गया है बाजार में
2: सब।
0: तो नैनो डीएपी का किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में और अपनी फसलों में, जिससे कि आपकी देखा दूनी जो है हमारे किसान भाई और भी करें?
2: देखो मैं बताना चाहूंगा, पहले नैनो की एक चीज और बताऊं, नैनो 2021 से लॉन्च करी गई थी।
0: अच्छा।
2: उस टाइम पे 4% की थी, जब से मैं नैनो यूरिया को इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे उस टाइम पे 4% का भी रिजल्ट मिलता था, अब तो फिर भी 20% की, इसका तो बहुत एक्सीलेटर रिजल्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: दूसरा, अब बात करें हम नैनो डीएपी की, नैनो डीएपी का इस्तेमाल हम इस प्रकार से करते हैं, इसका इस्तेमाल करने का 2 तरीका है।
0: अच्छा।
2: जिस प्रकार से नैनो यूरिया का करते हैं 5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से खड़ी फसल पे छिड़काव करना जब 35 दिन की हो जाए, वही प्रतिक्रिया सेम।
0: अच्छा।
2: जो नैनो की,
0: यानी कि लगाने का तरीका दोनों का सेम है?
2: सेम ही है। अच्छा। मगर इसका एक तरीका और है।
0: अच्छा।
2: लगाने का, जैसे हम अभी बात करेंगे हम खरीफ की फसल की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो धान की फसल में, यानी पेड़ी पे, तो पेड़ी में हम क्या करते हैं, इससे बीज यानी कि जड़ उपचार, रूट ट्रीटमेंट भी हम इससे कर सकते हैं, उसका करने का तरीका। हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा।
2: इसका बहुत एक्सीलेटर रिजल्ट है, वो इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हमने जब 5 से 8 ml पर लीटर पानी के हिसाब से एक हम गड्ढा बनाते हैं, 2 इंच गहरा हमने गड्ढा बनाया, उसमें हमने एक पन्नी बिछा लेते हैं, वहीं जहाँ पे पौध हमारी डली हुई होती है पौधा हम उखेड़ते रहते हैं, 5 से 8 ml पर लीटर पानी के हिसाब से हमने घोल बना के तैयार कर लिया। उस गड्ढे में हमने जो पौध उखेड़ी उसकी जड़ साफ करी, 20 से 25 मिनट उस पानी में रख दी, उसके बाद में हम अपने खेत में रोपाई करा देते हैं। टेक्निकली तरीके से करना चाहता हूँ फसल, तो मैं एक मैंने देखा है नेट पे और मैंने कृषि की भी कुछ किताबें पढ़ी है, तो उसमें लिखा हुआ होता है जैसे दाने वाली जो डीएपी एनपीके है उसकी चलने की जो फास्फोरस की क्षमता है वो 2 cm है।
0: अच्छा।
2: 2 cm में जब हम कांधेड़ में डालेंगे जब ही काम करेगी, जब कांधेड़ में हमने डाल ली, अब जड़ हमारी कहीं है, दाना कहीं है, जब जड़ वहां तक पहुंचे जब दाने को,
0: बिल्कुल
2: दाना लेगी पौधा, जब कहीं जड़ का विकास होगा, क्योंकि फास्फोरस का जो जड़ के विकास का काम है वो फास्फोरस का ही है। हमने अगर नैनो डीएपी से जड़ उपचार करी तो जड़ उपचार करने से ये है इसके जो नैनो कण है जड़ ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे खेत में पहुंचा, खेत में पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपना फास्फोरस लेना स्टार्ट कर दिया, इससे जड़ का विकास बहुत बढ़िया होता है। जब जड़ का विकास होता है तो कल्ले का विकास होगा, जब कल्ले का विकास होगा तो कम दिन की फसल हमारे ज्यादा दिन की दिखती है। और पुरानी भाषा में एक कहावत है साहब कि जो अघाया है वो सवाया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं यही सीख देना चाहूंगा।
0: बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आपने बताया था कि यूरिया में समय का ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, क्या ऐसे ही इसमें भी रखना है क्या
2: भाई साहब? ये नैनो को भी लेके ना किसी चीज का भी, चाहे इंसेक्टीसाइड हो
0: अच्छा
2: या फंजीसाइड हो, जो ग्रोथ प्रमोटर है या जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें तो खासकर हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर अधिकांश 35 से नीचे ही
0: होना चाहिए,
2: क्योंकि जब ही अच्छा फसल पे काम होता है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर पे तो स्टोमेटा बंद होंगे,
0: जब
2: पौधा ले नहीं पाएगा न्यूट्रिएंट्स को, वो तो पत्तों पे पड़े रहेंगे, टेम्परेचर के कारण वो सूख के वायुमंडल में उड़ जाएंगे। फिर हम जाके क्या करते हैं, हम खुद से, मैं पहले हम ही लोगों का ये रहता, हमने कर दी आंखें मीच के दोपहरी में, फिर हम लड़ने पहुंच जाते दुकानदार के पास कि ये तो काम ही नहीं दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी थी, गलती उसकी भी ये रहती है कि वो बताते नहीं है, उन्हें बताना चाहिए कि कब किस अवस्था में इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए।
0: करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई है और बड़े ही आपने अच्छे अच्छे तरीका बताए हैं, तो आपकी ये बात सुनकर हमारे किसान भाई अभी और भी लाभान्वित होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: पंकज भैया देखो, अभी हमारे सभी किसान भैया और बहनों ने सुनी गौरव कुमार जी के द्वारा फसलों में उर्वरकों का सही प्रयोग विषय पर जानकारी।
1: जी भैया,
0: हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी किसान भैया के लिए जरूर अच्छी लगी होगी, जो कि ग्राम मानकपुर बंजरिया ब्लॉक सैदनगर जनपद मुरादाबाद से
1: जी।
0: और अब हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं कृषि संकेत में जानकारी गन्ने की फसल में।

0: अच्छी तरीका से रखें। और देखो जा रहे हो कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लू से फसल को बचाने के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई भी
1: हाँ
0: करें।
1: भैया, क्योंकि खेत में नमी बनी रहा है ना। और भैया का इसके अलावा हम क्या क्या काम करें?
0: उसके अलावा जैसे अगर यूरिया को प्रयोग कर रहे हैं
1: जी
0: तो गन्ने की जो पत्तियां हैं उनके पास 65 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया को डालें। और देखो जाता है हमारे किसान भैया इस तरह से डालेंगे तो जो उनके फसल की बढ़वार है अच्छी होगी। कीट नियंत्रण को भी हमारे किसान भैया विशेष ध्यान रखें, जैसे चोटी बेधक है, जड़ बेधक है, ये कई तरह के कीट लग जाते
1: जी जी भैया,
0: हैं। तो इस तरह से हमारे किसान भैया के लिए इनके लिए कार्बोफ्यूरान नाम की जो दवा आती है उसको 13 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और उसको छिड़काव कर दें अपनी गन्ना की फसल में, तो हम समझते हैं कि जो चोटी बेधक कीट है
1: जी
0: उसकी
1: भैया।
0: रोकथाम हो जाएगी।
1: अच्छा, और भैया जैसे बात कर हम जड़ भेदक की ना, तो बामा होत का है कि हमारे जो पौधों की पत्तियां होती हैं वे सूख जाती हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उसके लिए जिस पौधे की पत्तियां सूख जाएं तो 3 से 5 सेंटीमीटर बाकी नीचे से पत्तियों को हमें काट कर नष्ट कर देने चाहिए, फेंक देना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: है ना भैया?
0: और इसके अलावा देखो खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो फसल में नमी और पोषण बनाए रखने के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखें और ध्यान रखें कि ताजे जो तेज गर्मी पड़ रही है ना
1: जी
0: उससे लू के समय निराई गुड़ाई और गहरी जुताई ना करें
1: बासा
0: जिससे
1: होता
0: जो है
1: है,
0: गाय खराब हो जाती
1: खराब
0: है।
1: जाती है और जो नमी को जो स्तर होता है वो गिर जाता है भैया।
0: तो इस तरह से हमारे किसान भैया अपने गन्ना की फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। और हम देखते हैं ना हमारे किसान भैया जो गन्ना की फसल के बारे में बता दी, इस समय देख रहे हैं कि आप तापमान बहुत ज़्यादा है
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: भैया।
0: सिंचाई बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: और नमी बनाए रखें,
1: जी भैया,
0: तो ये सारे काम समय रहते कर लें, लेकिन अब समय बहुत कम है तो हम बता दें हमारे जो किसान भैया हैं उनके लिए हम कल के कृषि जगत कार्यक्रम में का का लेकर आएंगे।
1: जी भैया,
0: सबसे पहले एक चर्चा होगी जैविक खेती कितनी ज़रूरी, इसके बाद आपके लिए एक भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी और प्यारे से लोकगीत से कराओ जाओ मनोरंजन सासू मतलड़, और कृषि संकेत में जानकारी दी जाएगी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में भी आपको एक जानकारी सुनवाई जाएगी और दी जाएगी मौसम की जानकारी।
1: तो देखो भैया अब समय ज़्यादा इजाज़त ना दे रहे हो, तो चलते चलते हम अपने कल के मौसम की जानकारी किसान साथियों को दे दें। कल जो मौसम रहेगा वो अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर्द्रता की बात करें तो 50%, और हवा की जो गति रहेगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की उम्मीद है।
0: तो भैया इस तरह से तो कल के मौसम के रहन को अनुमान है और अब समय अनुमति ना करो कि हम किसान भैया से और बातें करें, तो अब अपने भैया अनिल
1: और भैया पंकज को दे अनुमति।
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छांव बरगद की। इस कार्यक्रम में श्री विनय कुमार मित्तल से अनुभव प्रधान की भेंट वार्ता सुनिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। छांव बरगद के वो कार्यक्रम जो जिंदगी से जुड़े हुए अनुभवों को समेटे हुए होता है। जीवन को अगर एक किताब की तरह देखा जाए तो ये वो किताब है जिसमें वो लेखा जोखा है जो हम जिंदगी भर बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है और फिर वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का, छांव बरगद की। इस क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री विनय कुमार मित्तल को, जो कि शिक्षक रहे हैं और अब अवकाश प्राप्त करने के बाद एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आभार आपका भी।
0: बात शुरुआत से करेंगे, किस तरह से आपका बचपन बीता? कुछ यादें आपके मन में आज भी ऐसी होंगी जो बेचैन कर देती होंगी।
1: मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन इस समय में

0: बहुत संतुष्ट अपने जीवन से हूँ। किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैंने हाई स्कूल की परीक्षा भी व्यक्तिगत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की और उसके उपरांत 1970 में रामपुर में अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया।
1: जी
0: और उसके एक साल बाद सन 1971, 13 जुलाई 1971 को मैंने टैगोर शिशु निकेतन रामपुर में अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। और इस शिक्षण कार्य के साथ साथ मैंने अपनी शिक्षा भी निरंतर जारी रखी। हाई स्कूल के बाद मैंने इंटर किया, बीए किया, एमए किया, बीएड किया। और उसके बाद 1990 में मैं पीलीभीत में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुआ। मैंने 1996 में फिर मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने कुछ अपनी शिक्षण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और 1996 में मैंने प्रिंसिपल पद पर रहते हुए एमएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1997 में संबल में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुआ। मेरे प्रयासों से ये विद्यालय भी सीबीएसई से एफिलेटेड हुआ। 2010 तक निरंतर मैंने इस विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। इस बीच में मेरे बहुत से छात्र छात्राएं आज भी केवल मेरे चेहरे को ही नहीं, कहीं अंधेरे में अगर मेरी आवाज़ भी सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं, एकदम बोलते हैं कि आप मित्तल सर हैं क्या? आप माने कि मुझे इतनी खुशी होती है, वो मुझे खजाना मिल जाता है जो शायद कोई बहुत प्रयत्न करे तब भी ऐसा नहीं हो सकता।
1: सर, आपने संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त की। वो दौर कुछ ऐसा दौर था जब शिक्षक को भी अलग ढंग से परिभाषित किया जाता था, और जो शिक्षा ग्रहण करते थे विद्यार्थी थे, उनके भी मूल्य कुछ अलग होते थे। एक रिश्ता ऐसा था जो आज देखने को नहीं मिलता।
0: उस समय शिक्षक जो है संरक्षक की तरह अपने बच्चे को रखता था। उसे पूरा अधिकार था कि बच्चे को किस तरह से उसे पढ़ाना है, समझाना है, डांटना है। लेकिन आज शिक्षक संरक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और उससे अधिक अगर कहीं भी कोई प्रयास करता है तो समाज उस कार्य को करने से वंचित करता है। आज केवल मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक अपना कार्य कर पाता है, संरक्षक के रूप में या उसे एक अच्छा मार्गदर्शक बनने का उसे अवसर नहीं होता, क्योंकि आज समाज की परिस्थिति अलग है। वो आज बच्चे को वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध होती हैं, वो चाहता है कि स्कूल में भी जो घर जैसी सुविधाएं हैं वो भी वहाँ सब उसे सुविधाएं मिलें। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। वो कहते थे अब ये बच्चा आपके सुपुर्द है, आपको इसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ये आप समझें। लेकिन आज की परिस्थिति में वो कहते हैं हम स्कूल भेज रहे हैं, जितना ये सीख सके इसे सिखाइए, ज़्यादा इसके साथ जोर जबरदस्ती का प्रयास मत कीजिए।
1: ये जो परिभाषा बदली, ये जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदला, इसने समाज को काफी नुकसान भी पहुंचाया है।
0: ये तो निश्चित है कि समाज को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ शिक्षा की टेक्निक भी काफ़ी बदली हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बहुत है और नई नई विधियों के अनुसार और नई तकनीकी के अनुसार शिक्षा में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसके ज्ञान के साथ साथ आज जो सबसे बड़ी कमी है, बच्चे को संस्कार नहीं मिलते। अब से पहले शिक्षक बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उसे संस्कारित भी करता था। समाज में इसीलिए बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और जो शिक्षा का रिजल्ट मिलना चाहिए, जो परिणाम हमारे सामने आना चाहिए, वो हमें वो परिणाम नहीं मिल पाता है।
1: सर, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब तक संयुक्त परिवार थे तो बच्चों में संस्कार थे। बहुत सारे लोग थे जो उन्हें गाइड करते थे, उन्हें बताते थे, उन्हें टोकते थे, उन्हें रोकते थे, उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। लेकिन जब परिवार संकुचित होने शुरू हो गए, एकल परिवार चलन में आ गए, तो परवरिश का तौर तरीका भी बदल गया, संस्कारों की परिभाषा भी बदल गई, संस्कार देने का तरीका भी बदल गया।
0: अब जो एकल परिवार जो हो गए हैं उससे बच्चा संस्कार विहीन हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो परिस्थिति ये बदल गई कि अब दोनों लोग सर्विस में होते हैं। पहले केवल पुरुष होता था, माँ उसे घर में रहती थी, उसे संस्कार देती थी। फिर माँ को भी अगर फुर्सत नहीं है तो घर में संयुक्त परिवार होता था, चाचा है, चाची है, दादा दादी, कोई ना कोई उसे बच्चे को, बच्चे के साथ रहता था और वो बच्चे को सिखाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में बच्चे को माँ बाप का भी प्यार नहीं मिलता, दोनों सर्विस में चले जाते हैं, एक कोई आया या कोई और किसी तरह की सर्विस के लिए उसे रख दिया जाता है, वो बच्चे के बच्चा उन्हीं के पास रहता है, वो जैसे भी संस्कार देती है वो बच्चा सीखता है। और वो संस्कार इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है, वो जीविकोपार्जन कर गई है उसके माध्यम से, इसलिए वो उसे संस्कारित नहीं कर पाती है।
1: सर, आपने तो कर्तव्य के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों को बखूबी निभाया है और पारिवारिक जीवन भी आपका सफलताओं से भरा रहा है। किस तरह से आपने ये सब मैनेज किया, घर परिवार काम बाहर?
0: हमें कभी भी अपने परिवार से विमुख नहीं होना चाहिए। पहले हमें अपनी परिवार की जिम्मेदारियां, जो भी हमारे बच्चे हैं उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए, उन्हें संस्कारित करना चाहिए और उसके बाद फिर उन्हें स्वतंत्र रह के वो अपना कार्य कर सके। लेकिन फिर भी हमें उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी जैसे कोई पेड़ होता है, अगर वो उसकी देखभाल नहीं करेंगे, स्वतंत्र उसे छोड़ देंगे तो उसकी टहनियाँ झाड़ झंकाड़ बन जाएंगी। लेकिन अगर समय समय पर कटिंग उसकी देखभाल होती रहेगी तो वो एक सुंदर वृक्ष बनता है। इसी तरह से परिवार है कि अगर हम परिवार के सदस्यों को, भले ही चाहे वो बड़े हो गए हैं, समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, भले ही वो हमारी बात को ना माने, लेकिन बड़ों का ये कर्तव्य है कि उनका उनका मार्गदर्शन उनका करते रहें, जिससे वो कहीं भी अपने जीवन में भटके नहीं और अपना सफल जीवन व्यतीत कर सके।
1: सर, बुजुर्ग अपना दायित्व निभाना चाहते हैं, वो मार्गदर्शन देना चाहते हैं, वो परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आज समाज में कितने ही ऐसे परिवार हैं जो बुजुर्गों को अलग थलग छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम की कल्पना डर का एहसास कराती है, तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?
0: इसके लिए आज की आधुनिकता, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो हैं, उसके लिए हम अपने देश को, अपने नगर को, क्या सब कुछ छोड़ के बाहर विदेशों में चले जाते हैं। केवल एक उसका साधन ये रहता है कि हम अर्थ कमाएं, अर्निंग हो हमारी, और वो परिवार देश भूल जाते हैं। और उसी की वजह से आज जो भी अभिभावक हैं, कभी कभी ये अफसोस भी करते हैं कि हमने इसे इतना क्यों पढ़ाया लिखाया कि ये हमें छोड़ के ही चला गया। तो इसलिए हमें जो कुछ भी है, हमें अपने नगर से, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। और आज हमारा देश इस स्थिति में है कि यहाँ सब कुछ है, हमें देश की सेवा करनी चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने माता पिता के साथ रहें, भले ही चाहे हमें कुछ कम अर्निंग हो, लेकिन जो अलग हैं उनके लिए स्ट्रगल भी बहुत होता है और कभी कभी बहुत दुर्घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं जिनकी कल्पना करना संभव नहीं है।
1: हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अपनी जिंदगी एक उसूल के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जीते हैं और उम्र के इस पड़ाव पर आकर जब वो दूसरों पर, अपनी संतान पर निर्भर हो गए हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी आदतों में बदलाव करें, ज़्यादा दखलंदाजी ना करें, घर में चुपचाप एक कोने में पड़े रहें। तो ये जो समाज की सोच बन गई है, ये कितनी दुखदाई है।
0: देखिए, एक तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम सब कुछ ये सोचते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमारा कोई दायित्व नहीं है, सब कुछ सौंप देते हैं बच्चों को। और जब सब कुछ बच्चों को सौंप देते हैं, तब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फिर बच्चे कहते हैं कि अब इनके पास कुछ है नहीं, अब हम कहाँ से करें। तो इसलिए कभी भी बच्चों को परवरिश करें, उनका ध्यान रखें, लेकिन अपने जीवन यापन के लिए जो भी साधन है वो अलग से बनाए रखें, सब कुछ बच्चों को समर्पित नहीं करें। क्योंकि मृत्यु के बाद तो सब कुछ उनका है, तो जब तक खुद जीवित हैं तब तक सब कुछ बच्चों को समर्पित ना करें, अपनी व्यवस्थाओं के लिए उसे निश्चित रूप में अपने पास रखें। तभी हम जब बच्चे ये देखते हैं कि ये पूरी तरह हमारे ऊपर आश्रित हैं, एक एक चीज़ के लिए आश्रित हैं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है,
1: उपेक्षा शुरू हो जाती है। सर, ये बताइए कि आजकल आपकी दिनचर्या क्या रहती है, किस तरह से अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, कैसी डाइट लेते हैं, कैसी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं?
0: मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और 2010 के रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने जीवन को सामाजिक कार्यों में और धार्मिक यात्राओं में बिताया है, और मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं जगह जगह की धार्मिक यात्राएं करता हूं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि अपना देश देखिए, अपने देश को घूमिए, भ्रमण कीजिए, और मैं भी उसी तरह से, इसी कारण से मैंने अब तक सभी द्वादश ज्योतिर्लिंग, चारों धाम और अनेक धार्मिक यात्राएं की हैं। और समाज में भी जहाँ कहीं धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कोई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे भी मैं बराबर उसमें अपना कार्य करता रहता हूं और बाकी दिनचर्या अपने आराम से व्यतीत करता हूं। किसी तरह का कोई मानसिक तनाव अपने लिए नहीं रखता हूं। मैं दूसरों को सलाह देता हूं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य किसी को नहीं करता हूं।
1: अच्छा, अब उन लोगों के लिए क्या सलाह होगी जो आपके आयु वर्ग?
0: इसमें सबसे पहले तो हम तनाव मुक्त रहें, जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करें। सबसे ज़्यादा चिंतन मनन अगर हमें इस एज में करना है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति करें। सुबह रूटीन में वॉक करें, योगा करें, जो भी हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों। ये नहीं कि अब हमें कोई काम नहीं है, हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, हम समय से उठ भी नहीं रहे हैं, समय से खा भी नहीं रहे हैं, समय से सो नहीं रहे हैं। अगर ये हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित ही बहुत जल्दी हम अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या बिल्कुल नियमित करें, समय से उठें, समय से खाएं, और विशेष तौर से हम अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो फिर इस जीवन में कोई हमारा साथ नहीं देगा। जब तक हमारा शरीर साथ देता है तब सब हमारे साथ होते हैं।
1: अनुभवों का भंडार है आपके पास, लेकिन समय सीमित है हमारे पास। बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, अनकही रह गई हैं, लेकिन किसी और माध्यम से फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए, श्री विनय कुमार मित्तल जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे श्री विनय कुमार मित्तल से अनुभव प्रधान की भेंट वार्ता। कार्यक्रम था छांव बरगद की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम विवरण का।

हमारे केंद्र से आप आज सुन सकेंगे 7:31 पर सुगम संगीत कार्यक्रम। रात्रि 8 होगा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे कल सवेरे 6:05 पर। 6:30 पर कार्यक्रम होगा आज का चिंतन। कल सवेरे 6:35 पर कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य संदेश। कल सवेरे 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 342। कल सवेरे 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। सात बजकर 31 पर होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

8:45 पर कार्यक्रम होगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। उर्दू कार्यक्रम होगा कल सवेरे 9:30 पर। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। दस बजकर 45 मिनट पर कार्यक्रम होगा आसपास। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल सवेरे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

कुछ जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: होती है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री कुंदन सिंह से भजन।

0: वाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम, गीत गाता चल।

आइए साथियों देखते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पर पहली फरमाइश किन की आई है। व्हाट्सएप पे हमें फरमाइश करने वाले हैं चकला बाजार सामान शहर पंजाब से पप्पू राजा दिल खुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा परिवार। और साथ ही साथ इस गीत की हमें फरमाइश लिखकर भेजी है बागरी मोहल्ला रटलाई ज़िला झलावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागरी। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, समीना बी, आसिफा और शबीना। साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मुतलारा महाराष्ट्र।

से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती चिड़िया, ओम भैया। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मेहर नगर उमरगेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौहणकर राही, श्रीमती सरिता गौहणकर, प्रिंस एकांश गौहणकर बदलापुर मुंबई से, प्रणीता गौहणकर, सिद्धांत गौहणकर, अर्जुन गौहणकर टुक टुक, अकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गौहणकर, सुमित गौहणकर, कुमारी ध्वनि गौहणकर परी। मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह हितेर सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव और प्रभा रानी चटोलिया, चंदनगर दिल्ली से मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातमा नार अंसारी। और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा, शनि चौक खंडवा से पिंकी, मिंकी और रिंकी, डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, कबीर रेडियो लिसनर क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनेरी और प्रकाशवीर राजपूत, राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, वीरमगार्ड सिटी से अजीता मेहरा और सुनीता मेहरा, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक डिंगरा, विजय और अनुश्री डिंगरा, बिलाई से देव डूकर, तुषार और अजय देव डूकर, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोमन और डॉक्टर अदीबा, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी चमोरिया। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक्शन रिप्ले फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है जालंधर से मीना और संदीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, ऊपरकोट से साजिद खान, इंदिरा विहार दिल्ली से राधिका रानी, पूजा और अनीता जयपुरिया, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव और जानवी यादव, बक्सर से राज डी एस अंसारी और फातिमा नाज अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी, अजीता कुटरिया गुजरात से, गौरैया चौक अंबाला से संदीप और राकेश, बिहार रेडियो लिसनर क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीना शर्मा और अनामिका शर्मा, सर्जुना मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी, अजय देव थापा छत्तीसगढ़ से जानवी डोमिन, यामिनी और रोहित डोम, डोंडी लोहार से हरिशंकर बेलदार, प्रभा रानी बेलदार, उमा राज और जगदीश राज रायगढ़ से, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक भटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, पटना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवना कंचव, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंग मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी, मेन बाज़ार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर। तो आइए साथियों सुनते हैं लकी अली की आवाज़ में अनजाना अनजानी फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

डू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, निवासा खोपटी महाराष्ट्र से, वरवट बकाल बुलडांडा से, नारायण हांगे, कमल हांगे, दिव्या हांगे और जय हांगे। कल्याण मुंबई से किशोर हवराले, सुजाता हवराले, प्रतीक हवराले, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेशा जैन, शुभम जैन, अक्षय सेन, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देव गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिव्या गोस्वामी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगल बेन शाह, राजेंद्र सिंह शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान, बाबा साहेब वडोदरा से मीनाक्षी चरपे, रजनी कारनी, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान, पुत्रा मुस्तफ़ा खान, आफिया खान और शाहिद भाई, रहू भाई, छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देव, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, गणेश कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार, ज़िला बुलडांडा महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे, श्रीमती लक्ष्मी देठे, कुमारी सनिका देठे, और साथ ही साथ इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। ज़िला मुरादाबाद ग्राम धोलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। सक्षम चौहान, ज्योति अजीत चौहान, लता राजाराम चौहान, चांदनी चौक संगाली से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोपचना भगत, भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौंडा, मनजीत कौर जौंडा, करणवीर करण, दीपिंदर विपिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत।
छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, गांव चोहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, आपार डिंगिया, कासगंज से मास्टर राधेश्याम सक्षे, ऋषभ जौली मधु, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और पोता मास्टर अल कबीर, बालोद छत्तीसगढ़ से मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, चाविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, गांव पांडर कौड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, आई साथियों सुनते हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज़ में आवारापन फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल ताकरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रेयांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया। और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, कांठ रोड लदावली से। और साथ ही साथ हमें इस गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, दर्पण कुमार सैनी, ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर। वांडिक खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला से। जलालाबाग वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमित आहूजा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल, कुमारी कुमार प्रथमेत देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख और समस्त परिवार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से प्रसिद्ध कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सुफियान अनस, आयजा, अल्फिया, सदफ और हसनैन। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेश, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। जिला पीलीभीत टकिया केसरपुर भागसेड़ा से ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, संतोष, प्रिया और छोटी गुड़िया चंचल। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, नीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, थानाटीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, फैजान, एहसान और आसिफ भाई। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी। और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा, जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगोली से। शेरवानी स्कूल गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी।
قصبہ گنور یوپی سے فاروق علی خان، فیضی فراز، فرحان فریضہ طاہر، شاہجی بھوڑکے، شریمتی نندا بھوڑکے، ہنومان بھوڑکے، اتم جمداڑے، ہنگولی مہاراشٹر سے مہر اروڑا، ممتا اروڑا، کیرتی اروڑا، بھومیکا اروڑا، پدمپور ضلع شری نگر راجستھان سے۔ تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں ادت نارائن کی آواز میں ڈر فلم سے آپ سبھی کی پسند کا یہ گیت۔

कार्यक्रम में हमारे पास अगली फरमाइश आई है, बड़ा बम चौक खंडवा महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, संजीता, संजय और बेबी किट्टू, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमन, वैष्णवी डोमन, चंचल डोमन, अर्जुन गवनेकर, धीरज सौसारे,

अनिल कुमार धोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता धोड़के, गायत्री धोड़के, यशिज धोड़के, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई गायकवाड़, नांदेड़ महाराष्ट्र से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया फरुखाबादी, कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावेला मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुणा यादव, श्रीनिका श्रीनिजा, मुसर्रत जहानाज, तला जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोसी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हिना कौसर, राजद्वारा कोठी अफसराला से रुमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान, शमा परवीन, मध्य प्रदेश छिदवाला बिरडी नाना जी से, लामसे मीना, लामसे तेजस, जय लामसे, हर्षिता लामसे, बठिंडा रोड डबोवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया,

बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी। शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुण यादव, श्रीनिका श्रीनिजा। ग्राम टकिया केसरपुर जिला पीलीभीत से रामेश्वर दयाल वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, टेकचंद्र वर्मा और अरुण वर्मा और रजत। तो आइए साथियों सुनते हैं शान और कैलाश खेर की आवाज़ में फना फिल्म से आप सभी की पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम गीत गाताचल में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी

0: 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं, ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
5: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान

0: और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport.

सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान आजादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्य जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि

0: ईरान, इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके, फिर उसके बाद हिंदू कोश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है।
1: जी,
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेकर काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा यह है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
2: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक

0: डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे सांस सांस इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरिएट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा जो अमेरिका है, इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है। जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना, जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
3: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
3: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं, और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
4: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन, प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से।

0: चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन से आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा, इनफैक्ट मैं तो बोलता मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है
1: जी।
2: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका, कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padmasri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण।